नमस्कार। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 218 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोतो, आज बुधवार है। राष्ट्रीय शक संवत 1948 के श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो घड़ी में इस समय भोर के 5:55 और 45 सेकेंड्स हुए हैं। कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे प्रसारण आपके लिए FM के 100.1 MHz, DRM मोड पर 909 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल फ़ोन पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध हैं। आप हमें ट्यून कर सकते हैं प्रत्येक सुबह 5:50 से लेकर के रात्रि 11:10 तक लगातार हमारे प्रसारण आपके लिए उपलब्ध हैं। 6:00 हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में

0: कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Moving the bill, Union Minister Dr. Jitendra Singh said the new legislation reaffirms the government's deep commitment to safeguard the welfare of the students of the and the youth of the of this country. He said at the same time it is also a reiteration of Prime Minister Narendra Modi's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country. Dr. Singh claimed that it is a milestone legislation in the history of Indian Parliament. Listing a series of paper leaks that occurred during the Congress and UPA era, Mr. Singh said there was no comprehensive law to tackle the cases and the Modi government brought the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024 to ensure speedy justice.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose.

आज बुधवार का दिन और वंदना कार्यक्रम का श्री गणेश करें। विघ्न विनाशक लंबोदर एक दंत, देवताओं में अग्रगण्य भगवान गणेश की इस स्तुति के साथ, जिसे गाया है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने।

सबसे पहले गणेश जी को आराधने का, उनको ध्याने का, उनको पूजने का जो विधान किया गया है वो मात्र इसलिए नहीं है कि प्रतीक रूप में हम किसी एक देवता का पूजन करें, बल्कि उसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान है। और वो मनोविज्ञान ये कि कोई भी काम आरंभ करने से पहले हम अपने मन में संकल्प करें कि इस काम को हम पूर्ण करेंगे बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के। फिर काम जो हम करने जा रहे हैं उसमें लोक कल्याण की भावना भी जुड़ी हो। लोक कल्याण न हो तो कम से कम काम ऐसा अवश्य होना चाहिए जिससे इस समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न हो। क्योंकि इंसानी फितरत है कि वो भगवान को अर्पित करने के लिए यह चाहता है कि शुद्ध और शुभ और शुभ्र वस्तुएं हों। तो यदि हम आम जन में विध्वंसकारी कुछ गतिविधि करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपने आराध्य को वो अर्पित नहीं करेंगे। यह भी एक बड़ा कारण है कि किसी भी शुभ काम को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान किया गया है। यह प्रतीक रूप में हमने भगवान गणेश को मान लिया, बाकी देवी देवताओं के जितने भी रूप हैं वे सभी शिव और शक्ति के ही विभिन्न प्रतीक माने गए हैं। आप भले ही उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, विट्ठल कहें, हरि कहें, नारायण कहें, परमात्मा कहें, कृष्ण कहें, राम कहें, भगवान भोलेनाथ कहें, वाहिगुरु, अल्लाह, खुदा, मालिक, परवरदिगार, मौला, कुछ भी किसी भी नाम से पुकारें, बात तो एक ही है। जैसे पानी है, नहाने से लेकर के सफाई करने तक, पूजा करने में, पीने में, विभिन्न रूपों में काम में आता है, लेकिन अनमोल जल तो वही जल है, उसका इस्तेमाल अलग अलग है, उसके प्राप्त करने के स्रोत विभिन्न हो सकते हैं, उसके निस्तारण का तरीका अलग हो सकता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा एक ही है। आप भले उन्हें राम कहें, हनुमान कहें, भोलेनाथ कहें, कृष्ण कहें, कुछ भी और किसी भी नाम से पुकारें, बस शर्त एक है, आपकी पुकार में करुणा हो, पुकार में जो भी बात आप कहें वो पूरी हृदय से हो और उसमें लोक कल्याण, जन कल्याण जुड़ा हो।

श्रोताओ, 6:30 बजे हैं। आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी को। यह है कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़, 918 किलोहर्ट्ज पर। और आज के वंदना के इस अंक में मैं कमल पारीक आपके साथ हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है,

इस जीवन में जिस भी किसी व्यक्ति से, जिस भी किसी प्राणी से, जिस भी किसी घटना से हमें जो भी कुछ सीखने को मिला है, जिसने भी हमारे जीवन को आलोकित किया, प्रकाशित किया, एक मार्गदर्शन दिया, वे सभी घटनाएं, वे सभी लोग हमारे गुरु हैं। आज का दिन अपने गुरु के प्रति विनम्र होकर के उन्हें प्रणाम करने का दिन है। हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। साथ ही आज पूर्णिमा है आषाढ़ मास की, और साथ ही शुरुआत है पवित्र सावन के महीने की। और जब बात आती है सावन की, तो ऐसे में जिक्र होता है भोले बाबा का, भगवान भोलेनाथ का, औघड़दानी का। आइए वंदना की अगली प्रस्तुति सुने। नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाजों में इस शिव वंदना के रूप में

0: भक्ति आराधना का दैनिक कार्यक्रम वंदना आपने सुना कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। 6:45 हुए हैं, ये समय है चिंतन कार्यक्रम का।
1: जब भी हम आज का विषय है शिक्षा, जब भी हम शिक्षा के संदर्भ में विचार करते हैं, दो धाराएं हमारे सामने आती हैं, पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या जो

0: वर्तमान शिक्षा प्रणाली है जिसमें ज्ञान विज्ञान और भौतिकता के विकास की सारी दिशाएं हमारे सामने हैं और आज का मानव संपूर्णतया इसी को सब कुछ मान करके चल रहा है। विचार करें, क्या विद्याओं का इतिहास मात्र 100-200 वर्षों का ही है? क्या ज्ञान की सीमा यहीं तक निर्धारित है? नहीं, भारतीय विद्याएं या जिसको हम पराविद्या के नाम से जान सकते हैं हजारों वर्ष पुरानी हैं। आज गणित की बात करते हैं, हमारे सामने पाइथागोरस आता है। दर्शन की बात करते हैं, हमारे सामने सुकरात आता है। विज्ञान की बात करते हैं, हमारे सामने आइंस्टीन आता है। बड़ा विचित्र लगता है, क्या भारत में कोई दार्शनिक नहीं हुआ? क्या भारत में कोई गणितज्ञ नहीं हुआ? क्या भारत में कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ? ये सारे प्रश्न हमें सोचने को विवश करते हैं कि यदि हम भारतीय ज्ञान शाखाओं से परिचित होते तो हमारा ज्ञान इतना सीमित नहीं होता, संकुचित नहीं होता। भारतीय विद्या में तो उस शिक्षा की बात कही गई है जिससे हम अमृतत्व को प्राप्त कर सके, मृत्यु से भी पार पा सके और अपने आप को जान सके। वैदिक प्रसंग है जब याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं सारी संपदा का बंटवारा कर देता हूँ। उस समय मैत्रेयी कहती हैं, येनाहम नामृतम स्यामे तेनाहम किम कुर्मः, उससे मुझे क्या जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त न कर सकूं। वस्तुतः जीवन का सार केवल भौतिक विकास में नहीं, उसके साथ साथ में अपने आप के विकास में निहित है, अध्यात्म के विकास में निहित है। और उस दिशा में यदि हमारा चिंतन जागृत होता है तो हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और हमारा अपना अस्तित्व क्या है उसके प्रति भी एक जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का चिंतन है कि आज तक हम एनर्जी की खोज करते रहे बाहर के जगत में, ऑब्जेक्ट पर ही रिसर्च करते रहे, लेकिन हमें अपने आप के अस्तित्व के लिए रिसर्च करनी बाकी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में प्रारंभ से ही यह चिंतन रहा है। उस चिंतन को प्राप्त करके हम नया नवनीत प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य यह भी है कि आज भी उन भारतीय विद्याओं के ज्ञाता हमारे सामने उपलब्ध हैं और अनेक ऐसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी वे हमें प्रदान कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, या आज की भाषा में कहें तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान ऐसे ही आयाम हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक विकास भी कर सकता है, मानसिक विकास भी कर सकता है, बौद्धिक विकास भी कर सकता है और भावनात्मक विकास भी कर सकता है।
1: आध्यात्मिक दर्शन का दैनिक कार्यक्रम चिंतन आपने सुना। आलेख और विचार और वाचन स्वर समणी सत्य प्रभा के थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं 918 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव 326.7 मीटर्स पर। हम आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। प्रातः 7:10 पर खेतिया नमस्ते कार्यक्रम होगा। मानस गाना आप सुना करते हैं प्रत्येक सुबह 7:20 पर। सुबह 7:30 होगा लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात। इस कार्यक्रम में कुछ सामान्य चर्चाएं और कुछ फिल्म गीत सुनवाए जाते हैं। प्रातः 8:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। मरुमंगल कार्यक्रम में रामदास वाल्मीकि और साथियों को आप सुन पाएंगे प्रातः 9:10 पर।

फिल्मी गाने आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 बजे फिल्म संगीत प्रोग्राम में, सुहाना सफ़र कार्यक्रम में प्रातः 10 बजे, सैनिकों के लिए कार्यक्रम होगा 11 बजे, और 12:05 पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में भी फिल्मी गीत सुनाए जाएंगे। खेत खलिहान में जानकारी दी जाएगी, लागत घटाएं, उपज बढ़ाएं, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रसारण समय होगा दिन में 12:50। अंतर्राष्ट्रीय बांध दिवस, इस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दिन में 1:05 पर सविता कुमारी से महिला जगत कार्यक्रम में। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है जो जन सामान्य के काम आने वाला है, वो है कि बैंक अकाउंट क्लोज करने से पहले जाने जरूरी बातें। इस विषय पर भी सविता आपको जानकारी देंगी। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण विषय होगा शिक्षा हेतु ऋण संबंधी योजनाएं। इसी तरह के अन्य तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने वाला हमारा कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर आप सुन पाएंगे। इसी प्रोग्राम में टमाटर के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के मनोरंजन हेतु गीत तो इस कार्यक्रम में शामिल किए ही जाते हैं। फिल्म संगीत 2:30 पर दिन में आप सुन पाएंगे। दोपहर बाद 3 बजे से हमारी उर्दू सर्विस के प्रसारण आपके लिए उपलब्ध होंगे। संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में आज के इतिहास के बारे में कुछ बताया जाएगा। साथ ही आज के कार्यक्रम का आकर्षण होगा आपकी पसंद के तहत फरमाइशी फिल्मी गाने। शाम 6:05 पर सराय की जबान पर आधारित झोंक माहिती कार्यक्रम होगा। चौपाल में रमेश चांवरिया हाजिर होंगे। संध्या 7 बजे उपलब्ध होने पर बाजार भाव व मौसम की जानकारी देंगे। साथ ही आप द्वारा प्रेषित व्हाट्सएप संदेश, ईमेल और पत्रों पर आधारित पत्रोत्तर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:45 पर। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा दिल्ली से रिले की जाएगी। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में किसी भी फिल्म से संबंधित जानकारी और गीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:15 पर। सुगम संगीत होगा रात्रि 9:15। चर्चा का विषय रात्रि 9:30 बजे दिल्ली से हम रिले करेंगे।

फिल्म संगीत रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे। हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं रात 11:10 पर। श्रोतो, इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को। हमारे प्रसारण प्रातः 5:50 पर आरंभ होते हैं, जो जारी रहते हैं रात 11:10 तक लगातार। आप हमें अपने हाथ में मौजूद मोबाइल फोन पर भी सुन सकते हैं। एक छोटा सा ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, उसे डाउनलोड करें और जब चाहें जहां चाहें अपनी स्वतंत्रता के साथ आप हमें सुनें। इस समय 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार बुलेटिन दिल्ली से लेके जाएंगे, प्रतीक्षा करें।

और मिलकर परिणाम देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र

0: रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या रॉय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026.

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। काश्तकार भाई सुन रहे हैं। खेती नमस्ते कार्यक्रम जानकारी का विषय है नवजात बछड़ों की देखभाल।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज आप बात करांगा नवजात बछड़े या बछड़ी की देख रेख देखभाल या पालन किया करना चाहिए। तो किसान भाइयों नवजात बछड़े या बछड़ी की देख रेख असल में बिंग माग गर्भ शू जन्म शू पहला ही शुरू हो जाए। इन खतर किए कि पशु के ब्याण शू 3-4 महीना पहला ही बिना जरूरत के सारू चारो या दाणो जो है अपने दे देना चाहिए। किसान भाइयों नवजात पशु गए नाक और मुंह शू स्लेश माने काट देना चाहिए जके शू किए कि वो ठीक रूप शू सांस ले सके। इनके अलावा किसान भाइयों अगर नवजात पशु सामान्य रूप शू सांस

0: ले पा रहे हो तो लारले घुटने ने पकड़ गए और उल्टो लटका देना चाहिए, जके शू स्लेश मा या बलगम जखो है वो आप ही आप बारे निकल जाए। किसान भाइयों, नाक गे मा घास गो पत्तो अगर घाल दिया तो बी शू किए कि पशु छिंकन ला जाए और स्लेश मा जखो है वो नाक शू बारे आन ला। नवजात पशु गए शरीर ने सुती गाबे शू या बोरी शू साफ कर देना चाहिए, जके शू शरीर पर लागड़ी जकी जेर है बा साफ हो जाए। इंग बाद में बछड़े ने गाय के कन्ने छोड़ देना चाहिए, गाय भी ने चाट गए और साफ कर दे और सुखा दे। अगर गाय बछड़े ने ना चाटे तो बछड़े या बछड़ी के शरीर पर थोड़ो सो नमक छिड़क देना चाहिए, जके शु गाय बछड़े ने चाटनो शुरू कर दे। किसान भाइयों, अब तो बात ही जेर साफ करने की। आमतौर पर नाभि सूत्र की आप बात करा तो नाभि सूत्र आप ही आप टूट जाए, और जठे भी नाभि सूत्र टूटे बठे की आपने टिंक्चर आयोडीन जकी है वह जरूर लगा देनी चाहिए। पर अगर नाभि सूत्र जुड़ेड़ो ही रहे तो बिना एक नुए ब्लेड शू 3-4 इंच राख गए और काट देना चाहिए, और साफ धागे शू किए बांध गए और बी पर टिंक्चर आयोडीन जकी वह 1 हफ्ते तक लगानी चाहिए। किसान भाइयों, नवजात पशु ने जन्म गए तुरंत या आधे घंटे बाद में खीस खुआ देना, क्योंकि खीस गे मा गामा ग्लोब्यूलिन हुए जको बछड़े ने कई प्रकार की बीमारियां शू बचावे, खीस गे मा विटामिन और खनिज तत्व भी ज्यादा हुए। खीस दिन में 3-4 बीरियां बिंगे शारीरिक वजन गए 10वें भाग के हिसाब शू प्याणो चाहिए। अगर कई बार देखा किसान भाइयों कोई कारणवश गाय मर जाए या दूध कौन दे तो भी हालत गे मा बछड़े ने 1 पाव गुनगुनु करेड़ो दूध, 1 ग्राम खनिज मिश्रण, 2 कच्चा अंडा और थोड़ो सो विटामिन मिला के घोल बना के और प्याणो चाहिए। अगर पड़ोस में कोई गाय या भैंस ब्याड़ी है तो बिंगो खीस जखो है वो लिया के भी बछड़े ने प्या देना चाहिए, अगर बछड़े की माँ जकी है या तो दूध ना दे या फिर मर गई हुए। अगर बछड़े ने बिंगी माशू न्यारो रखना बी दशा में किसान भाइयों 3 दिन तक खीस प्या गए और माशू न्यारो करना चाहिए, और आधो चमचियो अरंडी को तेल जको वो प्याणो चाहिए। नवजात पशु ने साफ सुथरे और हवादार घरगे में रखना चाहिए और फर्श पर भी खतर बिछावन भी होना चाहिए। ठंडी हवा जकी है और खराब मौसम है बी शुकी है कि बींगू बचारो रखना चाहिए, और गर्म जगह में रखना चाहिए जके शुकी बिना निमोनियो ना हो जाए। बछड़े की 7 से 15 दिन की उम्र के बीच में कृमिनाशक दवाई दे देनी चाहिए, फिर 6 महीने की आयु ताई किएगी 1 महीने के अंतरे पर कृमिनाशक दवाई जकी है बाद देते रहना। बात करा किसान भाइयों बछड़े के दूध छुड़ाएगी तो प्रणाली है जके माँ बछड़े को पालन पोषण बिंगी माँ को दूध चुंगाए बिना किया करो जे, यानी बछड़े की माँ के थना शू दूध ना पिया गए और ई प्रणाली शू किए कि आपा बछड़े की किए कि दूध छुड़ाई करवा सक। बछड़े ने थोड़े टाइम बिंगी माँ के थन शू किए कि दूध प्याण खतर छोड़ देना चाहिए, जके शू किए कि दूध उतर सक, और बछड़े ने जन्म शू ही माँ शू न्यारो कर देना चाहिए। ओ तरीको गाँव में कोनी अपनाई जाए और सिर्फ जकी संगठित डेयरियाँ हैं बंग में जका फार्म बनेड़ा है बंग में या जकी सेना की डेयरी फार्म है बंग में ज्यादा अपनाई जाए। बात करा भी दूध छुड़ाई का लाभ के कुछ है तो की कारणवश बछड़े की अगर मृत्यु हो जाए तो भी शू किए कि मादा गाय जकी बिंग दूध उत्पादन पर इंगो किए कि बुरो प्रभाव कौन पड़े, और मादा पशु के दूध उत्पादन को रिकॉर्ड सही रखो जाए जके के आधार पर भी पशु को किए की राशन जको है वो निर्धारित करी जाए, और बछड़े के पालन पोषण को खर्चो जको है वो कम हो जाए। और कई बार किए की दांत लागण शू गाय का थन जको है वे घायल हो जाए तो इन शू थना ने भी किए की बचायो जा सके। तो आ चीजा को ध्यान रखे और आप गाय के बछड़े को जको है वो चौखी तरह किए की देख रेख और पालन पोषण करनो है। और अब किए की खेत को टेम होने ला रो है, अजय भाई ने दियो आ गया राम राम सा राम राम। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज आप बात करांगा नवजात बछड़े या बछड़ी की देख रेख।
1: आइए एक लोक भजन सुन लेते हैं, कलाकार हैं सुभाष कटारिया।

लोक भजन आपने सुना भाई सुभाष कटारिया की आवाज में। इस समय 7:20 हुए हैं। कार्टून सिटी चैनल सूरतगढ़ से प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस पर आधारित नियमित कार्यक्रम मानस गान। मानस गान में इन दिनों आप सुन रहे हैं लंका कांड का सस्वर पाठ। आज प्रस्तुत है भाग 319, मुख्य स्वर अनुराधा पौडवाल का।

समुद्र मंथन कर रही हूं। दिन का अंत हुआ। अनेक असुरों का संहार करके अंगद और हनुमान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उनके युद्धभूमि से हट जाने के बाद राक्षस एक बार फिर वानर सेना पर टूट पड़े। आसुरी माया से राख, पत्थर और रक्त की वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छाया देख वानर सेना में खलबली मच गई। श्री राम से ये रहस्य छिपा न रहा। उन्होंने अग्निवाण चलाकर चहुं ओर प्रकाश फैला दिया।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। अंगद और हनुमान ने रावण के किले में घुसकर राक्षस सेना में ऐसी उथल पुथल मचा दी मानो दो मंदराचल

अभी आपने मानस गान सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर।

श्रोताओं को नमस्कार। आपका अपना रेडियो दोस्त कमल पारिक हाजिर है आप लोगों के समक्ष सुप्रभात कार्यक्रम लेकर। श्रोताओं, थोड़ा सा सोच करके देखें, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जहाँ पर भ्रम है,

संदेह है, अज्ञान है, डर है, उस व्यक्ति के जीवन में असफलता है। वहीं दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के पास साहस है, विवेक है, अनुशासन के साथ आत्मविश्वास है, सही मार्गदर्शन है, तो उसके लिए जीवन में सब कुछ संभव है। और यह साहस, विवेक, अनुशासन, यह कहाँ से आता है? यह कोई रेडीमेड चीज नहीं है जो बाजार से आपने खरीद ली और उसे जीवन में धारण कर लिया, बल्कि यह आता है अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर। यह गुरु कोई भी हो सकता है, आपको पढ़ाने वाला शिक्षक हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके अपने माता पिता हो सकते हैं, कोई राह चलता राहगीर भी हो सकता है। बस आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम जो अच्छी चीजें जहां से मिलें उन्हें ग्रहण करते रहें, अपने में व्याप्त बुराइयों को दृढ़ संकल्प के साथ त्यागते चलें। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और यह दिन है गुरु पूर्णिमा का। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खासियत है, यहाँ पर प्रत्येक दिन, प्रत्येक वार, प्रत्येक तिथि हम किसी न किसी पर्व के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और होना भी चाहिए। इसके साथ ही हमारे यहाँ की खासियत और भी है, और वो ये कि हमने जीवन में सब चीजों का महत्व समझा। इस धरती पर हिंदुस्तान के अलावा शायद ही कोई देश होगा जिसने व्यक्ति के जीवन में गुरु का इतना बड़ा महत्व समझा हो, जहां गुरु पूर्णिमा जैसा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसको मनाने का तरीका कुछ भी हो, कोई त्योहार होता हो, संभवतः कहीं नहीं है। गुरु जिसके महिमा का बखान किया जाना कहीं संभव नहीं है। एक साधारण सा बालक, एक मंदिर की परिधि में रहकर, पलकर, पढ़कर, वहीं सोकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचता है, वैज्ञानिक बनता है, दुनिया जिन्हें APJ अब्दुल कलाम के नाम से याद करती है, उन्हें जानती है, संभव होता है सिर्फ उचित मार्गदर्शन से, अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर। आज के दिन हम नमन करें, प्रणाम करें, अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें अपने गुरुजनों को, जिनके माध्यम से हमने जीवन में कभी कुछ भी शिक्षा हासिल की हो, क्योंकि गुरु है जो एक लाइटर की तरह से एक चिंगारी भड़काते हैं और अग्नि जलती है, प्रकाशित करती है, हमारे जीवन को आलोकित करती है, हमारे भावी पथ को।

ईश्वर कह लो, उसके नाम अनेक, कह गए गुरुवर ज्ञानी ध्यानी, सबका मालिक अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, उसके नाम अनेक, कह गए गुरुवर ज्ञानी ध्यानी, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, उसी का अलख जगाओ, अंधकार को परे हटाकर मन में प्रेम की ज्योत जलाओ।

संत ज्ञानेश्वर फिल्म से ये रचना आपने सुनी, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गंगा का निर्बाध रूप से बहना, पानी का अविरल रूप से चलना तभी संभव है जब हम इस धरती के प्रति, इस आकाश के प्रति, समूचे वायुमंडल के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी तो संपूर्ण भूभाग पर वर्षा होगी। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि वर्षा जनित जल का संरक्षण हम ढंग से करें, पानी का दुरुपयोग रोकें, जहाँ भी लीकेज है उसे तुरंत दुरुस्त करें। यदि हमारे स्तर पर दुरुस्तीकरण नहीं हो सकता तो जो उचित व्यक्ति है, सक्षम अधिकारी है, सही विभाग है, वहाँ तक सूचना पहुँचाएं और फिर उसका पीछा भी करें, क्योंकि हमें यह स्वीकार करने में कतई दिक्कत नहीं है कि विभिन्न विभागों में हालांकि बहुत सुधार हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग इस तरह के हैं जो बात को, शिकायत को, जन समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए शिकायत करने के बाद थोड़ा सा उसका पीछा करें तो यकीनन काम होता है। जब पानी की और गंगा की बात चली तो गंगा के पानी की खासियत आप सभी जानते हैं। बरसों बरस यदि किसी पात्र में हमारे पास गंगा का जल है, वह पावन और पवित्र नीर

यदि हमने रखा है तो वह खराब नहीं होता। अब वैज्ञानिक इसे इस रूप में लेते हैं कि जब हिमालय से निकल करके गंगा मैदानी भागों तक आती है, तो इस दौरान उसमें इतनी जड़ी बूटियाँ, इतने पदार्थ, इतने मिनरल्स मिल जाते हैं और वे सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि वह पानी कई साल तक खराब नहीं होता। दूसरी तरफ आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष है जो इसे मानता है कि भगवान भोलेनाथ के शीश पर विराजित माँ गंगा उनकी जटाओं से निकल करके इस धरती के पतितों को पावन करने के लिए आती है और लोग उसी रूप में माँ गंगा को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके जल का आचमन करते हैं और उस पवित्र जल में स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं। कुछ भी हो, यह बात तय है कि जल जीवन है, जल के बिना हम जी नहीं सकते। एक मौके पर भोजन न मिले उसके बिना गुजारा हो सकता है, लेकिन पानी न मिले, हवा न मिले, सांस न मिले तो व्यक्ति उसी क्षण दम तोड़ देता है। हम महत्व समझें और महत्व समझने के साथ साथ यह संकल्प लें कि कम से कम हम पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आइए सुप्रभात कार्यक्रम में मजरूह का लिखा एक गाना सुने। चित्रगुप्त का संगीत है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है गंगा की लहरें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

मित्रों, इस संदेश के पहले जो हमने गीत सुना कि हमारे संग संग चली गंगा की लहरें, उसका संदेश एकदम साफ है। संदेश ये कि जीवन में पानी का महत्व है, और इसीलिए हमारे मनीषियों ने समय रहते मनुष्य को याद दिलाया कि वे भूमि का, गगन का, पानी का, वायु का, अग्नि का, सबका महत्व समझें, उन्हें परिरक्षित करें, संरक्षित करें, उचित दोहन करते हुए इस्तेमाल करें, और फिर अपने इन भंडारों में

बढ़ोतरी के लिए भी सोचते रहे। वाटर रिचार्जिंग का जो कंसेप्ट आज के वैज्ञानिक या कहें कि वर्तमान समय की इंजीनियरिंग सामान्य आदमी को बताती है, यह हमारे ऋषि मुनियों ने आदि अनादि काल में खोज लिया था। उन्हें पता था कि जो पानी बरसात के रूप में हमें प्राप्त हुआ है वह मात्र पानी नहीं है, जीवन के लिए अमृत है। इसका अनुचित दोहन या अनुचित इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए उन्होंने जल को देवता माना। और जो जल है वह सिर्फ पेयजल के रूप में ही हमारे काम में नहीं आता, जल हमें इंस्पायर करता है, हमें प्रेरणा देता है जीवन जीने की, लगातार चलने की, अनवरत मेहनत करने की, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहने की। इसी तरह के भावों को ध्यान में रखते हुए इंदिवर ने एक गीत लिखा था, कल्याण जी आनंद जी ने उसका संगीत तैयार किया था। मनाडे ने इसे बड़े मनोयोग से गाया। गीत हम आपको सुनवा देते हैं, सफर फिल्म का गाना है।

तो उसको चलना होगा। यह बात किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह बात आपके लिए है। जी हाँ, आपके लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, डरने की आवश्यकता भी नहीं है। बस आप अपने रास्ते पर सही चलें, कभी गलत न हो, गलती ना करें। फिर आपके संरक्षण के लिए कानून है, सरकार है, और वो सर्वव्यापक ईश्वर, वो अंतर्यामी, वो परमात्मा है। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचें, समाज की भलाई के लिए, मानव के कल्याण के लिए काम करें। समूची कायनात आपके साथ है।

करोड़ों अरबों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। बस मन में संकल्प लें, पहला कदम बढ़ाएं, दूसरा बढ़ाएं, तीसरा बढ़ाएं और इस तरह से चलते चले जाएं। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होती है जो घर से निकलते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि चाहे कितनी भी आंधी हो, बारिश हो, जहां हम लोग थोड़ा सा आलस्य कर जाते हैं, लेकिन उस तूफानी स्थिति में भी ट्रेन चलती हैं, बसें चलती हैं, जहाज उड़ते हैं, घड़ी की सुइयां लगातार चलती हैं। कहीं यह धरती माता नया सृजन कर रही होती है, उस तूफानी बारिश में भी कहीं कोई चिड़िया अपना नया घोंसला निर्माण कर रही होती है, और एक मनुष्य है जो जरा सी कोई दिक्कत होने पर चिंतित होकर के बैठ जाता है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपना कर्तव्य देखें, दिशा तय करें, बढ़ना शुरू करें, यकीन जाने मंजिल आपको मिलेगी। अक्सर यही होता है कि लोग मंजिल के नज़दीक आकर के थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन उस समय में जिन लोगों ने जरा सी और मेहनत की, उन लोगों को विजय श्री हासिल हुई। आइए, जो गीत हमने बीच में रोक रखा है उसको पूरा सुने। जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को। हमारे मीटर्स हैं 918 किलोहर्ट्ज़, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आज के कार्यक्रम के लिए गीतों का संकलन भाई नवीन सिसोदिया ने किया और मैं कमल पारीक आज आपके साथ मौजूद हूँ। मुझे दें सुप्रभात कार्यक्रम से इजाज़त। इस गाने को पूरा सुने और उसके बाद में हिंदी समाचार बुलेटिन दिल्ली से ले किया जाएगा।

0: नजर में जो भी रुका फिर गया वो भंवर में।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी।

0: दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज

0: 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की ये श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने

0: कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में कुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000 meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bags silver medal in women's weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed

0: 2026-27 के बजट के लिए 5,110 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में नमानिगारों से बात करते हुए वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का आगाज 1 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 से 60 साल की उम्र के दरमियान वाली वो खवातीन जिनके कुनबे की आमदनी 25 लाख रुपए सालाना है, इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगी।
1: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
0: भारतीय जनता पार्टी आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें यौमे पैदाइश के मौके पर गुरु पूर्णिमा के सिलसिले में पूरे मुल्क में श्री गुरु रविदास महाराज समरस्त संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। वाराणसी में सियर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जाय पैदाइश पर इस मुहिम का बाजाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आज बनारस के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास के जाये पैदाइश पर इस मुहिम का फौरी तौर पर आगाज होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां पर दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस मुहिम के तहत संत रविदास के मुकद्दस जाये पैदाइश की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्क की दीगर रियासतों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी इनेकाद किया गया है जिसमें तकरीबन 25,000 के शामिल होने का इम्कान है। प्रोग्रामों की ये फहरिस्त माघी पूर्णिमा और संत रविदास की यौमे पैदाइश यानी अगले बरस 20 फरवरी तक चलेगी। बीजेपी के सदर नितिन नबीन, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी समेत तमाम सरकर्दा लीडरान के इस प्रोग्राम में शिरकत करने की उम्मीद है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: केरलम में 14 में से 7 जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में तेज बारिश का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। रियासत में आज सुबह सवेरे से औसत बारिश हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर इलाके में सरकार की वेश्याना कार्रवाई में गुज़श्ता 2 दिन में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुँच गई है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। एक मकामी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने हजारों पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे पीर के रोज 25 अफराद मारे गए जबकि कल मजीद 5 अफराद हलाक हुए। उधर इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। साथ ही उसने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खित्ते में मवासलाती खिदमात बहाल की जाएं और वहां मीडिया और आज़ाद मुजाहिदीन को जाने की इजाज़त दी जाए। अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेस ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमेरिकी फोर्सेस पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमेरिकी फोर्सेस पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमेरिका ने यह दावा भी किया है कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेस ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेस ने इराक में ये इल्ज़ाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेस ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमेरिकी फोर्सेस और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाज़ों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलहा रखने के मकाम को निशाना बनाया। ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरका खेलों में गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में इस्मायनास चैंपियन का मकाम ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद रहा। 29 साल भारतीय वेटलिफ्टर ने कम्बाइन वजन 2,227 किलोग्राम उठाकर भारत का 7वां हिस्सा हासिल कर लिया। इस मुकाबले में हरजिंदर ने भी दौलत मुश्तरका का लगातार दूसरा तमगा हासिल किया। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में कांसे का तमगा हासिल किया था। इसके साथ ही ग्लासगो के इन खेल मुकाबलों में भारत के तमगों की कुल तादाद 12 हो गई है जिनमें

0: 2 सोने, 7 चांदी और 3 कांसे के तमगे हैं। इसी दौरान 4 भारतीय मुक्केबाजों का सोने के तमगे हासिल करने का यकीन है। ये लोग अपने तमगों को चांदी और सोने के तमगों में बदलने के मकसद से अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे, जब ये लोग सेमीफाइनल्स खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल पर बहस को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, पेपर लीक की रोकथाम के तरमीमी बिल पर जोरदार बहस। अखबार प्रताप की सुर्खी है, लोकसभा में मंगल को भी वक्फे सवालात खलल का शिकार रहा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर आजम ने आसाम के अराकीन पार्लियामेंट से मुलाकात करके सैलाब की सूरत हाल की मालूमात हासिल की, मदद का यकीन दिलाया। राजनाथ ने कोस्ट गार्ड में सिन्फी मसावात और इमदादी रकम से मुतालिक 2 पॉलिसी असलाहत का आगाज़ किया। यह खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार ने दौलत मुश्तरका खेलों में पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ के शॉट पुट में सोने का तमगा जीतने की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैन अलावी खबरें इस तरह हैं, इकतसादी पाबंदियां ईरान पर फौजी हमलों से ज़्यादा मौसर हो सकती हैं, अमरीकी हुकाम का बयान। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुजाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने तुर्की को F-35 जंगी तैयारों की फरोख्त पर नेतन्याहू का एतराज़ मुस्तरद कर दिया।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों और वजारतों में करीबी तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला अहदेदारों के साथ मीटिंग में मुस्तकबिल के इम्कान इकदामात के एजेंडे का जायज़ा लिया। आज लोकसभा में पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर आगे बहस होगी। दिल्ली सरकार ने हर अहल खातून को 2500 रुपये की माहाना माली इमदाद फराहम करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जाबराना कार्रवाई में मरने वालों की तादाद गुज़श्ता 2 दिन के दौरान बढ़कर 30 तक जा पहुंची है। और मगरबी एशिया में ईरान ने अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको एक भक्ति रचना सुनवाते हैं।

0: सुगम संगीत आपने सुना है कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। 9 बजने को है प्रादेशिक समाचार जयपुर से लिखे जाएंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र में 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र बनाए जाएंगे और मॉनसून के एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कई कठोर दंड शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयक में हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सरकार

0: के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्य सूची की समीक्षा की। कल हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति देना था। श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम बनाने का आह्वान किया और अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। गुरु पूर्णिमा आज देश और प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 516 संतों और महंतों के उनके आश्रम, मठ और मंदिरों में जाकर सम्मान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गुरु वंदन संदेश भी भेंट किया जाएगा। संतों और महंतों को सम्मान स्वरूप श्रीफल, शॉल, दुपट्टा, मिठाई और 2,100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर के लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचकर साधु संतों का सम्मान करेंगे। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भरतपुर की वैर तहसील के खेड़ली गुजर गांव पहुंचकर शिक्षा के क्षेत्र को 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचेंगे और वे बैर तहसील के खेड़ली गुजर पहुंचकर भरतपुर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से 793,84,00,000 रुपए की लागत से 21 कार्यों का शिलान्यास करेंगे तथा 268,40,00,000 रुपए की लागत के 18 कार्यों का लोकार्पण करेंगे और प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए DBT के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: राजस्थान समान सिविल संहिता UCC के प्रारूप को लेकर उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। जयपुर में स्थित शासन सचिवालय में हुई VC के माध्यम से इस बैठक में समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि समिति का एकमात्र उद्देश्य लैंगिक विषमताओं को दूर करना और समाज के संवेदनशील वर्गों को सामाजिक तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्तावित प्रारूप में धार्मिक स्वतंत्रता, रीति रिवाजों और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। बैठक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी चर्चा हुई। आमजन से प्रारूप पर 5 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल या QR कोड के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े की पहल पर राज्य वित्त पोषित प्रमुख राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण मोहन व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित 11 यूनिवर्सिटीज को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में अध्ययन को प्राथमिकता दिए जाने के अनुरूप विश्वविद्यालयों में ये अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पत्र के अनुसार राजस्थानी प्रदेश के बड़े भूभाग में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है और ये राज्य की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है। विश्वविद्यालयों से कार्रवाई शुरू कर इसकी सूचना राजभवन को भेजने के लिए कहा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ये दिन बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से सभी से बाघों के संरक्षण, प्रकृति, वन्य जीव और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए विशेष प्रयासों के नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं करौली का कैला देवी अभयारण्य रणथंभौर से छोड़े गए बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना बन गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना बाघों के

0: संरक्षण को लेकर देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पेश है सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: वर्ष 1973 में बाघ परियोजना घोषित होने के बाद से रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने और विश्व स्तर तक प्रसिद्धि के पीछे वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के कठिन परिश्रम मेहनत के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता भी प्रमुख है। वर्तमान में यहां 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 78 बाघ बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों फोटोग्राफर मूवी मेकर तथा रिसर्चर की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2008 से राज्य के का मुकंदरा रामगढ़ विषधारी तथा करौली धौलपुर वनों में भी बाघों को विस्थापित कर रणथंभौर के अलावा पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में बाघ संरक्षण सहित पर्यटन तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की एक बार फिर सक्रिय वापसी से मौसम खुशनुमा हो गया है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, वहीं कई स्थानों पर झमाझम बरसात का दौर जारी है। सिरोही में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। माउंट आबू में धुंध छाई हुई है और सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सवाईमाधोपुर में कल दिन भर चले बरसात के दौर से कई स्थानों पर नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई। रणथंभौर वन क्षेत्र में हुई भारी बरसात के बाद त्रिनेत्र गणेश मार्ग बाधित हो गया। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन आगामी आदेश तक बंद किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं आज से जोधपुर संभाग को छोड़कर बाकी सभी 6 संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र के 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और मॉनसून की एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा हुआ। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है 918 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुने मरुमंगल। आज के कलाकार हैं रामजस वाल्मीकि और साथी।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम भूरुमंगल अभी आपने सुना। कलाकार थे रामजस वाल्मीकि और सारथी। श्रुतो भूरुमंगल कार्यक्रम प्रत्येक सुबह 9:10 पर आप सुना करते हैं। इसके अलावा घरांगन कार्यक्रम में और चौपाल कार्यक्रम में भी कुछ राजस्थानी लोकगीत लोक भजन इस केंद्र से नियमित रूप से सुनवाए जाते हैं। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव पर 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़। इसके अलावा हमारे प्रसारण आपके लिए DRM के 909 किलोहर्ट्ज़, FM के 100.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR इस ऐप के माध्यम से मोबाइल फ़ोन पर भी उपलब्ध हैं। समय मिला लें, सुबह के ठीक 9:30 हैं। कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे हैं। हसरत का लिखा गाना है, सचिन देव बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

भाभी फिल्म का दो गाना सुने, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, धुन चित्रगुप्त की, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

शैलेंद्र की गीत रचना आप सुन रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। बसंत बहार फिल्म के लिए इस गाने को आवाज़ी दी लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर साहब को सुना है। राजा मेहदी अली खान की लिखी गीत रचना को संगीत से सजाया मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। ये गीत सुने महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी की गीत रचना है, एन दत्ता का संगीत है, फिल्म का नाम है धूल का फूल।
1: तेरे प्यार का

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ। वफा

रास्ता पुरखतर है, बला से अगर रास्ता पुरखतर है, मैं इस हाथ को, मैं इस हाथ को

एक बार मुस्कुरा दो। ये है फिल्म का नाम जिसका नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इंदीवर के लिखे बोल हैं, धुन ओपी नैयर की, मुकेश आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। इससे पहले जो गीत आपने सुना उसकी फिल्म का नाम था धूल का फूल।

0: समय मिला ले, ठीक 10 बजे हैं, 40 सेकेंड्स ऊपर हुए हैं। आपने ट्यून किया है आपके मनोरंजन की फुल गारंटी वाला चैनल कॉटन सिटी सूरतगढ़। मनोरंजन जारी है, बस ये लघु विज्ञापन आप सुने।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को सुने। मजरूह सुल्तानपुरी की गीत रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम काला पानी।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

आशा भोसले और साथियों को सुने। नया फिल्म्स के बैनर तले सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह ने नगमा लिखा। फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

आशा भोसले और साथियों का आपने सुना फिल्म थी बम्बई का बाबू। धुन सचिन देव बर्मन की थी और गीत रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को। मैं कमल पारीख आज आपके साथ हूँ। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गाना सुने हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है नागिन।

0: मिलो न तुम तो हम घबराएं, और मिलो तो आंख चुराएं। ये गाना हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा कैफी आज़मी ने, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म का नाम है हीर रांझा। लेकिन उससे पहले ये संदेश आप सुने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त

श्रोतो, आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ को, जो देता है आपको मनोरंजन की फुल गारंटी। इस केंद्र से फिल्म संगीत समेत सभी प्रोग्राम्स में विज्ञापन प्रसारण की भी व्यवस्था है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज, आपके व्यापार, आपके प्रतिष्ठान का विज्ञापन इस केंद्र से प्रसारित हो, तो इसकी माकूल व्यवस्था है। ज़्यादा जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे यानी कार्यकारी दिवस में आप हमसे संपर्क करें। बहुत ही कम लागत पर आपका विज्ञापन लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचेगा। और अब सुने योगेश का लिखा गाना, सलिल चौधरी का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम रजनीकांत था।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: शिव हरि के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल सुने अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है सिलसिला।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को सुने। आनंद बख्शी का गीत है, फिल्म का नाम है बेताब।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना। फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। आइए सुने आशा भोंसले और किशोर कुमार को। फिल्म जाग उठा इंसान।

अभी आपने बाजीगर फिल्म का गीत सुना, अब सुने दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

أي شو تاو أبثني فنا فيلم کا گیت شان اور ساتھیوں کی آوازوں میں.

आइए सुने तेरे नाम फिल्म का गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

अभी अपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत पद के गीत सुना, रचना थी आनंद बख्शी की, फिल्म का नाम था नाम। आइए सुने साधना सरगम और कुमार सानू को फिल्म कुली नंबर 1।

आइए कार्यक्रम के आखिर में सुने मोहरा फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ समय बाद दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत खेत खलिहान। यह कार्यक्रम होगा 12:50 पर। इसमें आज जानकारी का विषय रहेगा लागत घटाएं उपज बढ़ाएं जैव उर्वरकों का प्रयोग। दिन में 1 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर उज्जैन केंद्र से रिले की जाएंगे। महिला जगत यह कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बैंक अकाउंट बंद करने से पहले जाने जरूरी बातें, शिक्षा हेतु ऋण संबंधी योजनाएं और टमाटर का परिरक्षण विषयों पर। इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीत भी सुनेंगे। दिन में 2 अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन में 3 से, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 5 युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में आज फरमाइशी प्रोग्राम होगा आपकी पसंद। संध्या 6 आप सुना करते हैं कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। 6:05 पर कार्यक्रम होगा सैराइकी। शाम के 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी। 6:40 पर 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर उज्जैन केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 7 कार्यक्रम होगा चौपाल। इसमें आज आप सुनेंगे पत्रोत्तर। 7:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात के 8:00। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत आप सुन पाएंगे रात के 8:15 पर। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज 8:09 रात्रि 9 हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगे। रात के 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। चर्चा का विषय रात को 9:30 पर सुन पाएंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात के 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दुर्गा राम नायक की तरफ से दोस्तों, कुदरत ने हमें अनेक रंग और मौसम दिए हैं। एक ऐसा मौसम, एक ऐसा महीना हमारे जीवन में दस्तक देने की दहलीज पर खड़ा है, जिसका हम प्रत्येक वर्ष बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो मौसम, वो महीना जिसमें प्रेम प्यार का, जज्बातों का, अपनेपन का संगीत बजे, मोहब्बत के रिश्ते बने, जिसमें प्रकृति का उल्लास हो।

दोस्तों, बारिश के मौसम और सावन के महीने से बेहतर और क्या हो सकता है। इस मौसम में पहाड़ों को, पर्वतों को, पेड़ पौधों को और हमें जब चंचल सूरज की किरणें और चांद की रोशनी चूमती है तो ऐसे महसूस होता है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक अपनापन है और प्रकृति का, कुदरत का खूबसूरत फन है।

दोस्तों, सावन के महीने में धरती पर बादलों की झमाझम बारिश से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सूखी और तपी हुई धरती जब बरसात के पानी से तृप्त होती है तो प्रकृति का रोम रोम खिल उठता है, मन मचलने लग जाता है। ठंडी हवाओं से, रिमझिम फुहारों से पर्वतों, पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर मोर नाचता है, कोयल पपीहा गाता है और जगत के सारे जीव जंतु खुश होते हैं। रिमझिम रिमझिम फुहारें मनुष्य के सोए हुए जज्बातों को जगाकर दिल के तारों को झंकृत कर देती हैं।

से लगने लगते हैं। सावन की ठंडी फुहारें सिर्फ मौसम को ही खुशनुमा नहीं बनाती, बल्कि दिलों में भी विभिन्न प्रकार के फूलों के रंग भरती हैं। और ये मौसम पूरी कायनात को खुशबू से सराबोर कर देता है।

दोस्तों, सावन का मौसम सिर्फ प्रेम की अगन तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रकृति का श्रृंगार है। हर तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे और पत्ते नहाए धोए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं गुलाम अली।

श्रोता, उस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं गुलाम अली।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थे गुलाम अली। हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:50 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम खेत खलिहान में जानकारी तिल की उन्नत कास्त। पेशकश है रमेश चामरिया की।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप खेती पाती की, और खेती पाती में जहाँ बात करानी तो अब आखिरी जो को समा चलन ला रहे है वो अपने तिलहनी फसलों का वहाँ तिलगीज की खेती है, तिलगीज की फसल है बीजांत को जो को समा है वो अब चलन ला रहे है। तो अब वास्ता करता सके है कि आपने जो किसान भाई लोग अभी तिलगीज की उन्नत किस्म लेगी और बिंग बीजांत की है बाब जुलाई गए आखिरी ई पखवाड़ा का माँ कर देनी चाहिए, और यूँ बाद में जो कि बीजांत आप कर सें तो बाकी है कि अब धीरे धीरे आप अभी ने लेट ले तीफी में मानस का, और बीच यूँ की है कि अपनी उपज पर भी इंगो जो को प्रभाव है वो पड़ेगा, और अपनी जो की आमदन है अपनो जो को मुनाफो है बिंग ऊपर भी इंगो प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो आपने जगह भाई लोग है भी अच्छी तरह खेती की तैयारी कर रखी है तो भी अब तुरता फुरत आपने अच्छी उन्नत किस्म का बीज लेगे बढ़िया तरीके से बन उपचारित करके, और अब तिलगीज की फसल है बीजांत की अब कर देनी चाहिए है। बिया बता दे वहाँ का जगह भाई लोग अभी तैयारी कर ला रहे हैं कि भी तिलगी बीजांत करेगा तो बिंग लिए अपने भूमि जो की है वह बढ़िया होनी जरूरी है, और गहरी और अच्छी जो कि जल धारण करने वाली क्षमता वाली जो कि हल्की माटी और भारी माटी जगह गमा जल निकास की सुविधा जो की वह बढ़िया हुआ है तो बाद जो की भूमि है वो जो को खेत है वो जो को क्षेत्र है वो अपने तिल की खेती के लिए बड़ो बढ़िया मानी जाए, और इंगे लिए जो बलुई छारी और अम्लीय माटी जो की तिल की खेती के लिए बढ़िया कौन मानी जानी, क्योंकि जिकी माटी के माँ खारोपन है या फिर छारियापन है या फिर लवण की जिकी मात्रा है वह ज़्यादा है तो भट्टा तिल की जिकी खेती है बा कौन उसका सा तो भट्टापन तिलगी जिकी खेती है।

0: उठ जाए। तो अपन अंतर्शस्य जी की खेती को जो तरीको है विधि जी की है बा जरूर अपनानी चाहिए। मिलवा खेती का की फायदा है भी अपन जरूर उठाना चाहिए। अब बात करें जिया पत्ती और फली छेदक जगह कीट लग गए तो बंग लिया अपन ने भी जो को अभी जुलाई महीना का माँ वो इनको प्रकोप जो है वो ज़्यादा होने की संभावना रहे। पत्तियाँ जो की है वे खानी शुरू कर दे ऐसे ऐसा कई जगह कीटाणु है तो अपन इनको भी उपाय करना जरूरी है। और फलियां ने भी नुकसान अगर पुगान वाली लटन जो की है वे जाला बनाना शुरू कर दे तो ये मौके अगर आप बंग निर्धारण अपने नियंत्रण ना करेंगे नहीं तो अपनी जो फसल है बस शुरुआती दौर पर ही खत्म हो जाएगी और बीम बाद में फिर नुकसान ही नुकसान है। इन साथ साथ थाना बता देवा कि ज्या होक मोथ है या फिर फड़का जो को कीटाणु है मक्खी जकी है बा भी अपनी खेत का मल आ गए तो अपने जगह नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कोई कृषि विशेषज्ञ है या फिर कोई जाने जाने किसान है बाँसों भी टेम टेम पर राय में सीरो जो है वो करते रहना चाहिए। खेत का माँ कई बार आप जावा कौन नहीं और अपने पतों कौन लागे नहीं तो अपने जगह खेत है बाग माँ थोड़ी सी जाँच परख करनी जरूरी है। अगर यहाँ लगे कि अपने खेत का माँ कोई कीटाणु है विषाणु है कोई बीमारी है या फिर यहाँ लगे कि फसल ने अपन पानी देने की जरूरत है अगर ये छोटी मोटी जाँच परख अगर आप रखेंगे नहीं तो बीच क्या आप टेम पर फसल ने संभाल ले सियाँ तो अपन जो को घाटो है अपन जो को नुकसान है वो को नहीं हुआ ऐसा। तो ये तरीके से अपन अपनी जो तिल की खेती है वह बीजांत कर सकें। अब टेम जो है वो आखिरी चालन आ रही है छेकड़ो चालन आ रही है तो तुरताफुर्त खेत की तैयारी करके और आप तिल की जगह फसल है बा बीजांत कर देनी चाहिए। पर आप खेत करिए काम धंधा और भी करना है हूँ चालू सा राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान में जानकारी तिल की उन्नत कास्त। हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा नहीं करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों की चिंताओं और उनकी मांगों के जवाब में पेश किया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विधेयक को लाने के निर्णय से परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डीग जिले के पूछरी का लौठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम में संतों और गुरुओं का सम्मान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र के जतिपुरा स्थित श्री वन बिहारी जी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर श्री अष्ट सखा गोविंद स्वामी जी बैठक और ऐरावत कुंड का अवलोकन कर जिला प्रशासन को इनके जीर्णोद्धार सौंदर्यकरण और संरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इस समय भरतपुर के लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में साधु संतों का सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद विवेर तहसील के खेडली गुर्जर गांव पहुंचकर शिक्षा क्षेत्र के लिए 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। श्री शर्मा इस मौके पर मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। उन्होंने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ संरक्षण केवल एक प्रजाति की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे पारिस्थितिकी

0: तंत्र को संरक्षित करने और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखने से संबंधित है। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कहा कि प्राकृतिक स्थलों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि इन्हें ऐसे स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां इंसान शांति का अनुभव कर सके। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघों के संरक्षण से जुड़ी पहलों के बारे में श्री यादव ने कहा कि भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3600 से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि बाघ अभयारण्यों की संख्या भी बढ़कर 58 हो गई है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने सभी गौशालाओं में 30 सितंबर तक गौवंश की शत प्रतिशत डिजिटल टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए कहा कि हर गौवंश पर विशेष चिप आधारित टैग लगाया जाएगा और उसका पूरा विवरण नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। उन्होंने गौशालाओं को सरकारी अनुदान समय पर उपलब्ध कराने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। बांसवाड़ा जिले में आज सुबह एक स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक छात्र की मृत्यु हो गई जबकि 14 बच्चे घायल हो गए। इनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक छात्र को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को सविता कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज का दिन 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लुप्त प्राय बाघ प्रजातियों के बारे में जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में रूस में 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर के दौरान अस्तित्व में आया था। इन टाइगर रेंज वाले देशों की सरकारों ने 2022 तक प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए संरक्षण को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया था। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 की थीम है आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। यह दिन दुनिया में बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, मनुष्यों और इन शानदार प्राणियों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बहनों, 1973 में बाघों को बचाने के लिए एक अनूठी योजना के साथ भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसके शुरुआती सालों में 9 बाघ अभ्यारण्य थे, लेकिन समय के साथ बाघ परियोजना का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। बहनों, इस दिवस की शुरुआत करना एक वैश्विक मंच तैयार करना था। जैसा कि हम जानते ही हैं कि एशियाई देशों में बाघ पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है, तो यह दिवस इसी सहयोग के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाना भी है। इससे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। बाघ अपने पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारियों के रूप में काम करते हैं और शिकार प्रजातियों की आबादी को विनियमित करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहनों, यह दिन बच्चों, युवाओं और प्रत्येक नागरिक को बाघों और उनके संरक्षण के लिए शिक्षित करके जिम्मेदारी की भावना सिखाता है। यह दिन प्रेरित करता है कि हम दैनिक जीवन में पर्यावरण का संरक्षण सीखें। यह दिन जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देता है जो वन्य जीव संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, हमारी सुविधाओं के लिए बहुत से साधन मौजूद हैं। इन्हीं साधनों में से एक है बैंक। बैंक में हम अपनी जमा पूंजी, सैलरी, पेंशन, ज़रूरी कागजात, गहने ये सभी सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। हम अपनी दैनिक लेन देन या बचत के लिए बैंक में खाता खुलवाते हैं, पर कभी कभी किसी कारणवश हमें वह खाता बंद करवाना पड़ता है। कई बार ज़्यादा बैंकों में खाते होने से या नौकरी की वजह से जगह बदल जाने के कारण हमें खाता बंद करवाना होता है। यह हम अपनी मर्जी से बंद करते हैं, पर इसके लिए कुछ औपचारिकताएं भी निभानी पड़ती हैं। बहनों, हम जिस खाते को बंद करने की योजना बना रहे हैं, अगर उसमें कुछ जमा राशि है तो उसे नकदी के तौर पर निकाल लेना चाहिए या फिर किसी दूसरे खाते में स्थानांतरित कर देना चाहिए। और ये राशि ट्रांसफ़र करते समय ध्यान रखना है कि खाते के अंतिम लेन देन का स्टेटमेंट हम अपने पास रख लें। इसके बाद खाता बंद करने का फॉर्म भरें और बैंक अधिकारी के पास से रख सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। हम अपनी दैनिक लेन देन या बचत के लिए बैंक में खाता खुलवाते हैं, पर कभी कभी किसी कारणवश हमें वह खाता बंद करवाना पड़ता है। कई बार ज़्यादा बैंकों में खाते होने से या नौकरी की वजह से जगह बदल जाने के कारण हमें खाता बंद करवाना होता है। यह हम अपनी मर्जी से बंद करते हैं, पर इसके लिए कुछ औपचारिकताएं भी निभानी पड़ती हैं। बहनों, हम जिस खाते को बंद करने की योजना बना रहे हैं, अगर उसमें कुछ जमा राशि है तो उसे नकदी के तौर पर निकाल लेना चाहिए या फिर किसी दूसरे खाते में स्थानांतरित कर देना चाहिए। और ये राशि ट्रांसफ़र करते समय ध्यान रखना है कि खाते के अंतिम लेन देन का स्टेटमेंट हम अपने पास रख लें। इसके बाद खाता बंद करने का फॉर्म भरें और बैंक अधिकारी के पास जमा करवाएं। आपको उस खाते को बंद करने का एक कारण बताना होगा। अगर इस खाते से आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, बीमा या लोन का लिंक है, तो पहले अपने दूसरे खाते से इन्हें लिंक करें। इसके बाद बैंक अधिकारी को बैंक खाता बंद करने का प्रार्थना पत्र और स्वयं का हस्ताक्षर किया पत्र आपको बैंक में देना होगा। साथ ही इसके साथ आपको अपना चेकबुक, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड बैंक को वापस भी करना होगा। इसके बाद अधिकारी आपके खाते में किसी भी तरह का शेष या फिर लंबित शुल्क की जांच करेगा। अगर इसके लिए कोई जुर्माना देना होगा तो वह आपको देना होगा। कुछ

खाता बंद करने का चार्ज लेते हैं, तो वह भी आपको देना होगा। अंत में बैंक अधिकारी आपको एक्नॉलेजमेंट की एक कॉपी देंगे और फिर 10 दिन के अंदर आपका खाता बंद हो जाएगा। सारी कार्यवाही पूरी होने के बाद बैंक के रजिस्टर्ड ईमेल के साथ आपके मोबाइल पर भी खाता बंद होने का SMS आ जाएगा। अगर आप ये पूरी प्रक्रिया नहीं करते और घर बैठे बस इस खाते से लेन देन बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि यह तो बंद हो गया, तो ये गलत है। अगर आपने उसमें 2 साल से लेन देन नहीं किया तो वह डोरमेंट अकाउंट यानी कि निष्क्रिय खाता होगा, जिसे बंद करने के लिए इसे पहले चालू करवाना पड़ेगा। तो एहतियात तौर पर यह जानकारी ध्यान रखें और पूरी प्रक्रिया पूर्ण करें। आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

0: पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।
2: बहनों, हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने सपनों को पूरा करे। वह इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है, पर हर किसी का रास्ता इतना आसान नहीं होता। विद्यार्थियों के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह होती है धन की समस्या। बहनों, कई बार विद्यार्थी मेधावी होता है, पर धन की कमी के चलते वह उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाता। पर सरकार द्वारा इन विद्यार्थियों की सहायता हेतु कुछ ऋण योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसकी मदद से विद्यार्थी अपने सपने साकार कर सकता है। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रमुख शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ऋण योजना और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना प्रमुख हैं। ये योजनाएं विद्यार्थियों को देश या विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता और ब्याज पर छूट देती हैं। बहनों, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना भारत के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों के लिए बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे और बिना गारंटर के ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के विद्यार्थियों को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मोनेटोरियम अवधि, जिसमें अध्ययन का वर्ष और एक वर्ष या रोजगार मिलने तक की अवधि, इसके दौरान शिक्षा ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी देती है। बहनों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ऋण योजना पिछड़े वर्गों के पात्र छात्रों को स्नातक और उच्च स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत में अधिकतम 15 लाख रुपये और विदेश के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण रियायत दरों पर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत में पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बहनों, इन शिक्षा ऋण योजनाओं के जरिए मेधावी छात्र अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455

बहनों, हम हमेशा से ही देखते आए हैं कि हमारे घरों में सब्जियों को सुखाकर उनका परिरक्षण किया जाता है। राजस्थान में ककड़ी, टिंडा, गवारफली और काचर, इन सभी का परिरक्षण किया जाता है और जब इनका मौसम नहीं होता तब इन्हें उपयोग किया जाता है। इसी तरह हम आज टमाटर का परिरक्षण करने का तरीका जानेंगे। टमाटर को परिरक्षण करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि प्यूरी बनाना, सॉस बनाना, फ्रीजिंग करना और सुखाना, यानी कि डिहाइड्रेशन करना। बहनों, टमाटर एक सब्जी के तौर पर और सलाद के तौर पर खाया जाता है। यह विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के का अच्छा स्रोत है। साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी फायदेमंद है। टमाटर को लंबे समय तक बिना खराब हुए उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता के साथ संरक्षित करके रखना परिरक्षण कहलाता है। यह एक कृषि औद्योगिकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जिसके कई कारण भी हैं। बहनों, टमाटर टिकाऊ नहीं है, यह जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन इनके उत्पाद जैसे कि टमाटर की प्यूरी, सॉस, जैम परिरक्षित किए जा सकते हैं, जो टिकाऊ होने के साथ साथ आमदनी में भी वृद्धि करते हैं। सुरक्षित भोजन की बढ़ती मांग के कारण इन डिब्बा बंद पदार्थों का बाजार में विस्तार हुआ है, जो इस उद्योग के संवर्धन में सहायक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार के लिए कृषि को अधिक लाभप्रद होना आवश्यक है और उसका एक सरल और सहज उपाय है परिरक्षण करना। यह आर्थिक बचत के साथ रोजगार भी प्रदान करता है। बहनों, टमाटर परिरक्षण में सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की सॉस की, जिसे हम स्नैक्स के साथ बड़े चाव से खाते हैं। इसे घर पर बेहद आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर 1 किलोग्राम, चीनी 500 ग्राम, काला नमक 3 छोटी चम्मच, सौंठ पाउडर 2 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1.5 छोटी चम्मच, सिरका 4 बड़ी चम्मच। सबसे पहले टमाटरों को अच्छे से धोकर 4 टुकड़ों में काट लेना है। अब एक बर्तन में इन्हें भरकर धीमी आंच पर उबालना है। उबले टमाटरों को मैश करके छलनी से छान लेना है। अब इस छने हुए पल्प को आंच पर गाढ़ा करने के लिए रख देना है। गाढ़ा होने पर इसमें चीनी, काला नमक, सौंठ पाउडर और मसाला डाल देना है। अब इसे तब तक गाढ़ा करना है जब तक यह चम्मच से गिराने पर धार की तरह ना गिरे, बल्कि एक थक्के की तरह गिरे। जब इस स्थिति में यह आ जाए तो आंच बंद कर दें और ठंडा करके सिरका इसमें मिला दें और किसी सूखी कांच की बोतल में भरकर रख लें और इस तरह से तैयार हो जाएगा स्वादिष्ट सॉस। टमाटर के परिरक्षण के बारे में हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं पहले ये प्यारा सा गीत।

बहनों, गीत से पहले हम टमाटर के परिरक्षण के बारे में बात कर रहे थे। टमाटर की सॉस के अलावा हम टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलोग्राम टमाटर, पानी 2 लीटर, सिरका आधा कप, नमक 1 बड़ा चम्मच और आधा कप चीनी। प्यूरी के लिए टमाटर

को अच्छी तरह धोकर एक बर्तन में पानी डालकर आंच पर उबलने रखना है। टमाटर उबलने के बाद 5 मिनट इन्हें गर्म पानी में ही डालकर रखना है। अब इन्हें ठंडे पानी में डाल के रखें और 5 मिनट बाद छीलकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। अब एक बर्तन में टमाटर की प्यूरी में सिरका, नमक और चीनी डालकर इस प्यूरी को गाढ़ा होने तक पकाना है। ठंडा होने पर कांच की सूखी बोतल में भरकर रख लेना है। जब सब्जी में टमाटर डालना हो तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बहनों, हम टमाटर का जैम भी घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 5 बड़े साइज़ के टमाटर, चीनी 1 कप, इलायची पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, नमक 1 चुटकी भर, घी 1 बड़ा चम्मच। इसके लिए टमाटर के 4 टुकड़े करके एक बर्तन में उबाल लें, फिर ठंडे करके मिक्सी में पीसकर छान लें। जब ये मिश्रण पीस लें तो एक बर्तन में टमाटर प्यूरी, चीनी, इलायची पाउडर, घी, नमक डालकर गाढ़ा होने तक सेकें। जब यह गाढ़ा हो जाए तो ठंडा करके सिरका मिलाएं और किसी कांच की साफ सूखी बोतल में भरकर रख लें। बहनों, अगर आप कुकिंग की शौकीन हैं और कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो इस काम को शौक के साथ साथ बिजनेस भी बना सकती हैं। आज हर कोई ताज़ा, साफ सुथरा और केमिकल फ्री खाना खाना पसंद करता है और घर पर इन चीज़ों को बनाकर हम अपने परिवार को स्वस्थ भोजन दे सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ एक और प्यारा सा गीत।

0: have also gone up from 28 to 32, underscoring the country's growing commitment to water conservation. Designated Ramsar sites have also grown from 26 to 100.
1: Designated Ramsar sites ki sankhya 26 thi, jo badhkar ke ab 100 ho gayi.
2: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today. India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
4: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए।

0: ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
1: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
1: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: JPSC बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ ना कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो JPSC में धांधली हुआ इसको CBI जांच करे।
1: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद PP चौधरी ने संविधान

0: समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
1: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
2: हाँ।
1: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
5: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

0: आयुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल

मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है उड़ान।

आइए श्रोता अब सुने आग और शोला फिल्म के गीत मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में।

आइए श्रोता, वो अब सुनी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को। फिल्म का नाम है जान की कसम।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में गीत लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है। फिल्म का नाम है बरसात।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संकेत। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम रिले की जाएंगी।

सामिन आपको बता दें, बस कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे जनाब मुस्तजाबुद्दीन मलिक का तहरीर करदा फीचर, जो हमने दास्तां उनकी सुनाई। ये फीचर राजा मीर अली खान की शख्सियत और खिदमात के हवाले से दूसरा और आखिरी हिस्सा है। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नश्र होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मेहताब आलम से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरे जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत और कहा है कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। जनूब मगरबी जापान के कुमा मोटो इलाके में शदीद जलजला आने से 13 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। और आज दुनिया भर में शेरों का बैन अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। शेरों के तहफ्फुज़ की कोशिशों में भारत सबसे आगे है और दुनिया के कुल शेरों की तादाद में से लगभग 70% भारत में पाए जाते हैं। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दिन के दौरान पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के दरमियान कम से कम 40 अफराद हलाक और बहुत से दूसरे जख्मी हो गए। खत्ते में फैली हुई बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बहिमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। यूनाइटेड कश्मीर आवामी नेशनल पार्टी UKPNP ने गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज़्यादा अफराद को हलाक किया जा चुका है। ग्रुप ने अक़वामे मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और बैन अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी मदद करें और इस तरह के वाक़यात की आज़ादाना और गैर जानबदाराना जाँच कराई जाए। इसके अलावा इंसानी हकूक़ से मुतालिक बैन अक़वामी जिम्मेदारियों का पास रखा जाए। इसी दौरान वजारत खारजा ने फिर कहा है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिनमें पाकिस्तान के गैरकानूनी और जबरन अपने कब्जे में लिए गए इलाके भी शामिल हैं, भारत के लाजमी जुज़ हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वजारत खारजा के हकायक का पता लगाने वाले शोबे ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा खत्े में इंतखाबात महज लीपा पोती है ताकि खत्े में इंसानी हकूक़ की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर से तवज्जो को हटाया जा सके। उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब से दसियों साल से जारी इकतसादी इस्तेहसाल, इंतजामी जुल्म सितम और बुनियादी हकूक़ से महरूम किए जाने का बराह रास्त नतीजा है। भारत ने आबनाए हुरमुज में मुतअद्दिद बहरे जहाज़ों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि खित्ते में तजारती जहाजरानी और सिविल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अक़्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि खित्ते में जारी तनाज़ों में मुख्तसर वक्फे के बाद हमलों का दोबारा आगाज़ और कशीदगी में इजाफा तशवीश का बाइस है। उन्होंने GFS गलेक्सी, MT अलबहिया और MT बुम्बासा समेत कई बहरी जहाज़ों पर इस माह आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट और आज़ादाना आमद रफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। खबर मिली है कि जनूब मगरबी जापान के कुमामोटो इलाके में शदीद जलजले से 13 अफराद की जानें ज़ाय हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचा है, बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है और शदीद गर्मी की वजह से उन हज़ारों अफराद के लिए इमदादी कामों में पेचीदगियाँ पैदा हुई हो रही हैं जिन्होंने पनाह ले रखी है। किशु, शिनकासिन, बुलेट ट्रेन और कुछ हवाई जहाज़ों की आमदोरफ्त अभी तक मुअत्तल है और नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म सनई ताकायशी ने कहा है कि बुरी तरह मुतासर इलाकों में इमदादी कोशिशें जारी हैं। इसी दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस जलजले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जापान के आवाम और वहां की सरकार के साथ यकजहती और हिमायत का भी इजहार किया है।

और शामिल लीजिए, सुनिए अनपढ़ फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर की आवाज़ में। नगमा निगार है जमीद अली खान, मौसीकार मदन मोहन।

सामने सिनेमा के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे राजा मेहदी अली खां के लिखे कुछ फिल्मी नगमे उनके यौम पैदाइश के हवाले से। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है राजा मेहदी अली खां की शख्सियत और खिदमात के हवाले से जनाब मुस्तजाबुद्दीन मलिक के तहरीर करदा फीचर जो हमने दास्तां उनकी सुनाई का दूसरा और आखिरी हिस्सा।

सन 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में राजा मेहदी अली खां और ओपी नैयर साथ साथ थे और दोनों ने इस फिल्म में बेहतर

0: चांद जर्द जर्द है।
1: राजा मेहदी अली खान और मदन मोहन का सबसे शाहकार काम सन 1962 में आई फिल्म अनपढ़ के जरिए सामने आया। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इस फिल्म के गाने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे बड़े सगीर के कानों में रस न घोलते हो।

आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, सबसे ज्यादा बार सुना गया फरमाइशी गीत माना जाता है। तकनीकी एतबार से देखा जाए तो फिल्म अनपा का ये गाना दरअसल एक गजल है। इस फिल्म के दीगर नगमे भी आज तक हवाओं में नूरो निखत घोलते हैं और हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गानों की लिस्ट में सरे फहरिस्त आते हैं।

अनपढ़ के सभी गानों को लता मंगेशकर ने निहायत खूबसूरती से गाया, जैसे है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करें मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सके तो वही कहें कि मैं क्या करूं।

राजा मेहदी अली खान ने फिल्मों के लिए कमोबेश 400 के करीब गाने लिखे और ये बहुत मकबूल हुए। आज भी ये नगमे हमारी थकी समातों में शहद खोलते हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि राजा मेहदी अली खां की फिल्मी शायरी आबिज़र से लिखी जाने के लायक है। उन्होंने शकील, साहिर और मजरू के उरूज के जमाने में अपने नाम और काम का डंका बजवाया, जो कोई मामूली काम न था।

राजा मेहदी अली खां के सुरीले गीतों में बहुत से ऐसे हैं जो हमको बेखुदी और सरशारी के आलम में पहुंचा देती हैं। उनका ये गाना तो आज भी दिलों पर नक्श है।

राजा मेहदी अली खान ने उर्दू नगमा निगारी को एक नया आहंग और दिल फरीब अता की। उनके नगमे सदाबहार हैं, वो आज भी नसीमे सुबह की तरह नरम नाजुक और पानी पर बहते चरागों की तरह रोशन है।

0: अदबी शायरी के मैदान में राजा मेहदी अली खां का नाम हमेशा दरख्शां रहेगा। उनके फिल्मी गानों में एक अजीब नमक आमेज मिठास पाई जाती है। वो आवामी होने के साथ साथ इल्मी भी हैं। अपना मियार उन्होंने हरगिज हरगिज कभी गिरने नहीं दिया और न ही उन्होंने अदबी मियार को कम होने दिया।
1: जो

राजा मेहदी अली खां के गानों में एक गहरी नगमगी, अमीर गनायत और दिल फरेबी है। उनके अल्फाज में आबशारों का बहाव और शफक के तमाम रंग बिखरे मिलते हैं।

राजा मेहदी अली खान ने जो लिखा वो सीधा दिल से निकला और दिल में जज्ब हो गया। आज भी बरसगीर की फजाओं में उनके नगमे गूंजते हैं तो एक अजीब सहर तारी हो जाता है और दिल दिमाग रक्स गुना हो जाते हैं। सन 1962 में आई फिल्म आपकी परछाइयां का ये गाना उनकी एक लाजवाब तखलीक है।

1946 में आई फिल्म वो कौन थी नगमरेज फिल्मों की फहरिस्त में एक हसीन इजाफा थी। इसकी मौसीकी और इसके गानों में एक जादू था जिसके असर में आज तक हम सब गिरफ्तार हैं।

राजा मेहदी अली खान के गानों से मुजयन मेरा साया एक नाकाबिल फरामोश म्यूजिकल फिल्म है जिसके लिए मदन मोहन ने बेहतरीन और यादगार मौसीकी तख्लीक की।

70 की दहाई से राजा मेहदी अली खां फिल्मों से कनारा कश होते गए। इस दौरान उन्होंने अपनी मिजाहिया शायरी को सजाने संवारने का काम किया। फिल्म भूमिका में शामिल ये गाना उनके आखिरी गानों में से एक।

0: हर आफत से तूने मुझे बचाया, दायम रहा मुझ पर तेरे अल्ताफ का साया। जब नाम तेरा लेके कोई नकब लगाई, हर काम की तदबीर मुझे तुझने सुझाई। सच तो ये है कुत्तों को सुला रखता है तू ही, मेरे लिए दरवाजा खुला रखता है तू ही। राजा मेहंदी अली खां की एक पैरोडी मिर्जा गालिब और उनकी बीवी के कुछ अशार इस तरह से हैं। इशरते बीवी है शौहर में फना हो जाना, ना कि हर बात में शौहर से खफा हो जाना। रोटियों से भी है हम महरूम, अल्लाह अल्लाह, बावर आया हमें बीवी का खुदा हो जाना। दिल से मिटना तेरे रोते हुए बच्चों का ख्याल, हो गया गोश से नाखून का जुदा हो जाना। दर्दे सर पहले ही था मार के डंडा बोली, दर्दे सर पहले ही था मार के डंडा बोली, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। वालिदा मीर नन्हे मीर के सरहाने, राजा मेहंदी अली खां की ये भी एक दिलचस्प पैरोडी है जो कि इस तरह से है। बुआ चावल न इस कमरे में तोलो, बुआ चावल न इस कमरे में तोलो, न चाबी के लिए तकिया टटोलो। बड़ी सर्दी है दरवाजा न खोलो, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो। ये तड़पे दिन में और रातों को जागे, ये तड़पे दिन में और रातों को जागे, अभी से लड़कियों के पीछे भागे। किसी लैला पे आशिक हो गया है, अभी टुक रोते रोते सो गया है। मुए अतार के लड़के से यारी हुई जब इसकी, इसने आंख मारी, न उस जालिम ने कुछ की पर्दादारी, उठाकर मुंह पे दे मारी पिटारी। ख्यालों में उसी के खो गया है, अभी टुक रोते रोते सो गया है। तंज और मिजाज से राजा मेहंदी अली खां को एक दिली ताल्लुक था। राजा मेहंदी अली खां की मिजाज अशारी एक निजी शौक की मानिंद थी, जो धीरे धीरे वजीर आगा और मीरा जी जैसे लोगों की हौसला अफजाई के बाइस आवाम तक पहुंच सकी। मिजाज शायरी में राजा मेहंदी अली खां की जबान सादा और सलीस है, खास तौर से उनकी तजमीन का जवाब न था। मिर्जा गालिब की गजल पर ये तजमीन समाअत फरमाइए।
1: सब कहां कुछ फिल्म में जाकर नुमाया हो गई, सब कहां कुछ फिल्म में जाकर नुमाया हो गई, सूरतें क्या क्या यहां होंगी कि पिन्हा हो गई, देखती है सारी दुनिया उनकी बजमाराइया, हम बेचारी बैठी बैठी ताकते निसियां हो गई।
0: राजा मेहंदी अली खां के अशार जेरे लब तबस्सुम की मुंह बोलती मिसाल है। मशहूर जमाना गजल पर तजमीन देखिए।
1: लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में, बिकता नहीं है घी मेरा उजड़े दयार में, भूखा मरूंगा आलमे ना पाएदार में। लाहौर से चुरा के मैं लाया था चार टिन, दो मुंबई में बिक गए दो मालाबार में, रिक्शे में खट से बैठ के चल दी वो महलका, आशिक खड़े ही रह गए लंबी कतार में। हूं वो गुनागार के मुनकिर नकीर ने, पीटा है मुझको घुस के मेरे मजार में।
0: राजा मेहंदी अली खां की एक और नज्म डाकू इब्ने डाकू इब्ने डाकू तंजो मिजा की बेहतरीन मिसाल है।
1: मेरे मामू के जाली नोट अमेरिका में चलते थे, मेरे मामू के जाली नोट अमेरिका में चलते थे, हजारों चोर डाकू उनकी निगरानी में पलते थे। मेरे खालू कहीं न्यूयॉर्क में जेबें कतरते थे, लबे साहिल वो 14 औरतों से इश्क करते थे। चचा मेरे बहुत मशहूर थे फन्ने रिजालत में, मुकदमा हार कर नंगे वो नाचे थे अदालत में।
0: राजा मेहंदी अली खां ने साफ सुथरे अंदाज की मौसर मिजाही शायरी की है। मशहूर शायर मीरा जी शायरी के अलावा अगदारे फन को जांचने परखने और समझने समझाने का काम बहसियत नक्कात करते थे, ताकि अच्छे बुरे अदब में तमीज की जा सके। मीरा जी ने राजा मेहंदी अली खां के मजमूए मिजराब के दिबाचे में हिजू गोई और मिजा निगारी के फर्क को वाजे किया है। मीरा जी लिखते हैं,
1: राजा मेहंदी अली खां के मजमूए का मुताला भी पहली ही नजर में जाहिर कर देता है कि इस शायर की जहानत के भी दो नुमाया पहलू हैं। एक रोमानी पहलू जिसमें मोहब्बत और जवानी की मीठी बातें हैं, और दूसरा हकीकत परस्त पहलू जो बाज समाजी खराबियों को दूर करने के लिए तंज़ो तज़हीक के निश्तर चलाता है। लेकिन फनकार यानी राजा मेहंदी अली खां की तबीयत में ये दोहरी नशोनुमा क्यों कर मुमकिन हुई? बात यह है कि बच्चा जो बड़ा होता जाता है उसका शऊर भी गहरा

और वसी होता रहता है और वो अपने बचपन की दुनिया को मिटते देखता है और इसलिए जवानी के असरात से अपनी एक नई दुनिया बसा लेता है। ये दुनिया मोहब्बत की रोमानी दुनिया होती है, लेकिन उम्र के साथ एक दिन ऐसा आता है कि ये दुनिया भी मिटती दिखाई देती है। उस वक्त इंसान जिंदगी के अमली पहलू से दोचार होता है और हर बात को सही किस्म की ऐनक से देखने लगता है। राजा मेहंदी अली खां की रोमानी दुनिया में निगत व यास्मीन का तस्किरा है और नाज़नीनें भी कभी चिलमन के पीछे से और कभी चिलमन उठाकर अपनी झलक दिखाती हैं। अंधी जवानी के जज्बे इश्क मोहब्बत के बारे में शायर का अंदाज़े नजर क्या है, इसे मालूम करने के लिए पहली नज़्म देखिए, मोहब्बत और जवानी, और पहले ही शेर में शायर का फलसफा मोहब्बत मालूम हो जाता है। वो लिखता है, किस लिए फिरता है मूरख यूं आवारा गली गली, किस लिए फिरता है मूरख यूं आवारा गली गली, सूरतें और भी हैं दुनिया में कुछ ऐसी ही भली भली।

जुलाई सन 1996 को मुंबई में राजा मेहदी अली खान ने दाई अजल को लबैक कहा और वहीं की खाक में हमेशा हमेशा के लिए सो गए।

जो हमने दास्तां उनकी सुनाई। अभी आप राजा मेहदी अली खां की शख्सियत और खिदमात के हवाले से जनाब मुस्तजाबुद्दीन मलिक की तहरीर करदा फीचर की ये दूसरा और आखिरी हिस्सा सुन रहे थे। सदाकार थी अली मोहतशिम रदा और दानिश इकबाल, माविन थी मोहम्मद अनस फैजी, पेशकश अली मोहतशिम रदा की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में जुर्म फिल्म का ये नगमा।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। ये नगमा फिल्म थी आए दिन बहार के। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आप सुनिए आर डी बर्मन की मौसीकी से जय नगमा, आवाज़ किशोर कुमार की। ये फिल्म है बुढ़ा मिल गया।

सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सावन भादो फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था सोनिक ओमी ने। और समझ लीजिए, अब सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में डर फिल्म का नगमा, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार शिवहरी।

जिस फिल्म पर नगमा आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में, नगमनी गाती नीलेश मिश्रा, मौसीकार MM करीम। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, मौसीकार है रविंद्र जैन।

तशवीश का बायस है। उन्होंने GFS गैलेक्सी और MT अलबहिया और MT मोम्बासा समेत कई बाहरी जहाज़ों पर इस माह आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट और आज़ादाना आमद और रफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा से बात कर इमदादी कोशिशों का जायजा लिया। वहाँ बालाई आसाम में ज़बरदस्त सैलाब आया हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनाब शाह ने सैलाब की सूरत हाल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और भारत सरकार की तरफ से मुतासर इलाकों में तामीर नौ, बहाली और तमाम ज़रूरी इमदाद जारी रख

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को आज विकास पारिक का प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, आज बुधवार है और बुधवार के दिन आप अपनी पसंद के गीत हमारे युवाणी के कार्यक्रम में आपकी पसंद के तहत सुना करते हैं। आपके बहुत से व्हाट्सएप मैसेज और खत हम तक पहुंचे हुए हैं। इन खतों पर, इन व्हाट्सएप के आए संदेशों के पसंदीदा गीतों को हम आपके सुनवाएं। उससे पहले सावन के इस महीने में कार्यक्रम की शुरुआत करें इस गीत से। आइए सभी इस गीत का और सावन के महीने का आनंद लें।

0: सावन का महीना पवन करे शोर।
1: सावन का महीना करे शोर।
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म का नाम मिलन। इस गीत को सुनना चाहते थे आप सभी और अब हम शुरू करें आपके व्हाट्सएप संदेश। ये संदेश हमें सबसे पहले मिला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान और आयशा सबिहा अनस और रेहान का। संदेश हमें मिला दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। बिल्कुल, आप कार्यक्रम सुने, यकीनन हर गीत आपके किसी न किसी श्रोता की पसंद का ही होगा। ये संदेश हमें लिखा पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने। संदेश हमें किया नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर ने। संदेश हमें किया जिला खारगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुष वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा ने। यह मिलन फिल्म का गीत सुनना चाहते थे जिस गीत से हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। ये संदेश हमें लिखा उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमी बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिसान खान का संदेश हम तक पहुंच गया है। संदेश हमें किया कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले ने। आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा का ये संदेश हम तक पहुंचा है। रघुनाथपुरा से संदेश करते हैं हमें लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज का यह संदेश हम तक पहुंचा है। संदेश हमें किया कर्णपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत हमें सुनवाएं। बिल्कुल, आप कार्यक्रम सुने, हम आपकी पसंद या आप श्रोताओं की ही पसंद का कोई

गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। अमरपुर जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, संभव हो तो अनाड़ी फिल्म का गीत हमें सुनवाएं। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, हम आपको जरूर सुनवाएंगे और बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं आपके द्वारा जो प्रेषित की गई है वो हम तक पहुंच गई और हमारे द्वारा अन्य श्रोताओं तक भी ये शुभकामनाएं प्रेषित हो रही हैं। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा मायल और जगदीश जौहरी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का ये संदेश हम तक पहुंचा। विरम गांव से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी भावसार और राकेश भावसार का संदेश किसी भी गीत की पसंद के साथ हम तक पहुंचा है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू का ये संदेश हम तक पहुंचा। संदेश हमें किया सूर्यवाड़ा हनुमानगढ़ से डॉक्टर सतनाम सिंह, सवना, जसवीर, जस्सी और सुमन ने। ये संदेश हमें किया सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबादत, किरत हुजरे और रेहान शेख। लिखते हैं कि कोई भी गीत में हमारा संदेश शामिल करें। बिल्कुल आपका संदेश शामिल है और आप सभी की पसंद का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। आइए सुनें।

0: एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट

0: मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल
1: संदेश अभी आपने सुना और अब शामिल करें आपके कुछ खत। ये खत हमें लिखा कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। यह ख़त्म तक पहुंचा भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता श्रीवास्तव, विमल श्रीवास्तव, आशा, राधिका और पूरे परिवार के लोग। लिखते हैं कि गीत हमें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह ख़त्म तक पहुंचा गांव खोखरावाली से विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा और शगुन बरासा का। लिखते हैं कि कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं, कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम सुनते रहें। यकीनन हम आपको आपकी पसंद का गीत भी जरूर सुनवाएंगे। ये खत हमें लिखा भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत मिशन और बेबी जानविका ने सूरतगढ़ से। खत हमें लिख करके भेजा नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री और मोहनलाल सुथार के साथ महावीर मिस्त्री। कहते हैं कि हमारी पसंद का गीत यदि संभव हो तो जरूर सुनाएं। बिल्कुल हम आपको आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएंगे, आप कार्यक्रम सुनते रहें। अमरपुरा जालूखाट से खत हम तक पहुंचा जगदीश चंद्र प्रजापति। लिखते हैं कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें, जरूर आप शामिल हैं और गीत भी आपको पसंद आएंगे। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जी एस नायक, शोभा नायक और पूरा डागला परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। गांव दौलतपुरा गंगानगर से शिवलाल बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित, हेमंत, अंजू बेनीवाल का ये खत हम तक पहुंचा। ये खत हमें लिखा डबवाली हरियाणा से जेके बाकोलिया, सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल और मीनू बाकोलिया ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार हमें खत लिखता है, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का खत हम तक पहुंच गया है। गांव चौधरीवास से मांगेराम सतोड़, सुनील टेलर, शुभम और यश का खत हम तक पहुंचा। ये खत हमें लिखा मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंचुक

खन्ना, बेबी दीपांशी इंदौरा ने, मंडी गोलवाला से ब्रजला चौहान और नीरज कुमार चौहान का खत हम तक पहुंच गया है। गिदरबा पंजाब से मंजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हनीशा, पदमपुर से पवन तनेजा और योगेश तनेजा का ये खत हम तक पहुंच गया है। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

साजन का घर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत के बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का था। और अब आपके व्हाट्सएप संदेश जो हम तक पहुँचे हैं वो हम शामिल करें। ये संदेश हमें लिखा चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। लिखते हैं कि लूटमार फिल्म का गीत यदि संभव हो तो हमें सुनवाएं। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, हम आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएंगे। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा लिखते हैं कि किसी भी गीत में आप हमें शामिल करें। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश हमें किया बोरखेड़ा पित्राम्बल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुणत ने। गांव हीरावाणी फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम रणजीत राम किरोड़ीवाल लिखते हैं कि प्रोग्राम आपकी पसंद हर बार सुनते हैं, आज सावन की शुरुआत हो गई है तो सावन का कोई गीत हमें सुनवाएं। बिल्कुल आज तो सभी श्रोता सावन के ही गीत सुन रहे हैं और हम आप सभी श्रोताओं की पसंद के गीत ही आपको सुनवा रहे हैं। यकीनन सभी गीत आपको पसंद आएंगे। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार का ये संदेश हम तक पहुंचा। बीकानेर से रानी बाजार, बीकानेर से रानी झाम और बिट्टू झाम का ये संदेश हम तक पहुंचा है। चक 58 NP रायसेनगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी मलखट, हरवंश लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी और मोनिका मलखट के साथ गीतांजलि मलखट हमें संदेश करते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन का ये संदेश हम तक पहुंचा है। चक 14

ईएसबी से कुलदीप सिंह, राजवीर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क का ये संदेश हम तक पहुंचा। करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत का ये संदेश हम तक पहुंचा। नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, मुकेश कृष्ण रामचंद्र, कपिल देव और हिमानी जाखड़ का ये संदेश हम तक पहुंचा है। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड का ये संदेश हम तक पहुंचा। कहते हैं कि कोई भी सदाबहार गीत था हमें सुनवाएं। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। फाजिलका पंजाब गांव बनवंता हनवंता से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और पूरा मायल परिवार हमें ये संदेश करता है। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर और राजेश, राकेश, ऋषिता का ये संदेश हम तक पहुँचा है। ये संदेश हमें किया जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने। लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ कुमार डूडी का संदेश हम तक पहुंचा है। आइए आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

लूटमार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले की आवाज़ में। गीत के बोल अमित खन्ना के, संगीत राजेश रोशन का था। संदेश आपके शामिल करें राजकोट से जोमिन जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन का ये संदेश हम तक पहुंचा। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब हमें संदेश करते हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर का ये संदेश हम तक पहुंचा। चक 15 पीएस से सरजीत सिंह जोशन, सरजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्शपाल जोशन, मेलबर्न से रोबिन सिंह जोशन, वैकनूर का ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश हमें किया गांव अरायण से डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, विमला जयपाल, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया। लिखते हैं कि यदि संभव हो तो हमारा गीत हमें ज़रूर सुनवाएं। बिल्कुल आपका या फिर आप श्रोताओं की पसंद का ही गीत हम आपको सुनवाएंगे। अलीका तहसील डब्वाली से रूप सिंह लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, रानी, सोनू और रजनी का ये संदेश हम तक पहुंचा। मंडी केसर सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहन लाल प्रजापति। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें। उदयपुर राजस्थान से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत नचानी, मिथिल नचानी, बाबू भाई चांदीवाला हमें संदेश करते हैं। ये संदेश हमें किया गांधी चौक रूपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जगजीत विरक और मीका विरक ने। संदेश हमें किया गांव हाडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा ने। यह संदेश हम तक पहुंचा दादा बाबू रोड केडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रानाज और बेबी चाहत का। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमें संदेश करते हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़। लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत हमें ज़रूर सुनवाएं, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें। गांव हीरावाड़ी फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक और भूपेंद्र पारिक का ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश हमें किया अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता हागोड़े, कुमारी प्रियाली हागोड़े, पार्थ हागोड़े और पूरे परिवार के लोगों ने। गांव कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, कैलाश सुथार, युवान सुथार, नरेंद्र सुथार और लक्षिता का ये संदेश हम तक पहुंचा है। तो आइए आप सभी को सुनवाएं आप सभी की पसंद का ये गीत।

अभी आपने अनजाना फिल्म का गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुछ खत और हम शामिल करें सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान का खत हम तक पहुंचा। ये खत हमें लिखा मजिता डब्वाली से, दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर और खनी लोट ने। खत हमें लिखा जो हमेशा संदेश किया करते हैं साधु शहर से, हमारे नियमित श्रोता राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड ने। लिखते हैं कि कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह खत हमें लिखा विजयनगर से हनुमान तिवाड़ी, मंजूबाला, दीक्षा, सुरेश सैन और सोनू सैन ने। गंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। चक 5 MD पत्रोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और सुनील जनागल का ये खत हम तक पहुंचा है। ये खत हमें लिखा पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया,

बेबी आरजू जाजोरिया ने लिखते हैं कि कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं, कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम आपके संदेश शामिल करें। ये संदेश हमें लिखा काशी निवास से, और लिखने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो हैं प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े और वैष्णवी रंभाड़े के साथ हर्षेल रंभाड़े, बंगाली पंजा नागपुर से ये हमें संदेश करते हैं। नागपुर से ही इनके साथी टोनी बोरकर, ललिता बोरकर भी कार्यक्रम सुनते हैं। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से ये संदेश हमें किया विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, हनुमान सहारण और लीलाधर स्वामी के साथ कुंदन जाखड़ ने। लिखते हैं कि कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये संदेश हमें किया शेरगांव बुलढाड़ा महाराष्ट्र से संतोष, तेजस और लोकेश। ये संदेश हमें किया गांव लोहागढ़ ठाकुरराव वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। गांव ढाणी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इरमान खां, सीमा बानो, विनोद खां। कहते हैं कि सभी गीत सुनते हैं, कोई भी गीत सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने। संबलपुर कांकेर से फाल्गुन यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का ये संदेश हम तक पहुँचा। संदेश हमें किया मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहिताज और पीयूष राज ने, नेकीराम बंशीलाल बंशीवाल, जोनी बंशीवाल, धनराज बंशीवाल। लिखते हैं हमें कोई भी गीत सुनवा दें, लेकिन जगह का नाम आपने नहीं लिखा। ये संदेश हमें किया हितेंद्र दास ने आसाम से, कहते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल का ये संदेश हम तक पहुंचा है। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गैरी, बाबू गोरी और हसन सिक्का का ये संदेश हम तक पहुंचा है। उमरकोट मोहल्ला चौकुंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निर्गत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और पूरे परिवार के लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं। कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का ये संदेश हम तक पहुँचा। संदेश हमें किया झोरड़ फार्म हाउस गांव बहलोल नगर से नतेंद्र झोरड़, भीमसेन, लोकेश, गौरव, पुनीता झोरड़ और बेबी आरवी झोरड़ ने। संदेश हमें किया शेरवानी स्कूल गज टुटवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी पिंगा वाला चौक गुराया जालंधर से हमें संदेश करते हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यीशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह का ये संदेश हम तक पहुंचा है। आइए आप सभी को सुनवाएं आपकी पसंद का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपके संदेश पुनः शामिल करें। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाड़कर, प्रणीता अर्जुन और टुक टुक के साथ अभिजीत और श्रीमती सरिता ग्वाड़कर, प्रिंस एकांश ग्वाड़कर का ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश हमें किया चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा के साथ इनके घर के सभी साथी, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का यह संदेश हम तक पहुंचा है। हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का यह संदेश हम तक पहुंचा। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखट शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का ये संदेश हम तक पहुंचा है। गांव डाकघर निमावाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर का ये संदेश

तक पहुंचा है। गांव खमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम ढूकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमना, सायना, विष्णु ढूकिया और इनका दोहिता ईवा धारणिया भी कार्यक्रम सुन रहा है। गजडुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी का ये संदेश हम तक पहुंचा। गजडुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खां, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय का ये संदेश हम तक पहुंचा। आइए आप सभी को सुनवाएं आपकी पसंद का ये गीत।

प्यासा सावन फिल्म के इसी गीत के साथ अपने साथी विकास पारिक को युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दें। नमस्कार।

अब युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए। अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की भाषा का कार्यक्रम। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40 और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल संध्या 7 बजे, जिसमें पत्रोत्तर में आपके व्हाट्सएप ईमेल और पत्रों के जवाब दिए जाएंगे। फिल्मी गीत आप सुनेंगे 7:45 पर। संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 8 बजे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से होगा रात्रि 8:15 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात्रि 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। स्पोर्ट्स कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। सुगम संगीत में 9:15 पर आप सुनेंगे कुछ गजलें। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्मी गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए सराय की भाषा का कार्यक्रम सुनिए।

सिया पापा जी देखो अजे कुड़ी ता पत्ता कहनी हुणे कोल मारन दा इरादा है। बबलू सिया होर गोपाल कुड़ी पसंद है। गोपाल तुसा देखो। सारे खुश थी गए। बबलू मामे दे पुत्तर को फोन किता भिरावा जी गल अगे बधाओ गोपाल को कुड़ी पसंद है। सब मिलदे हैं शगुन दोना दे मां प्यो देंदे हैं। गोपाल हिक गल गोपाल अखेंदा है हिक गल आखनी है साकू डाज शोर शराबा नहीं चाहिदा हिक कुड़ी चाहिदी है। नीलम ता बबलू गोपाल दा मुंह देख दे रेगी है। गोपाल आखदा है मां पापा जी मैं बहु ता कहनी मासा जिया कमा घिणदा हां कि असा सारिया खा सकूं। साकू कुड़ी चाहिदी है डाज कहनी व्याह भी सिंपल। सारे गोपाल दी गल मन के राजी थी गिए शादी भी सिंपल थई। गोपाल सारे रिश्तेदारा को दोस्ता को हिक शानदार पार्टी दित्ती। माता रानी दी कृपा नाल सारा कम ठीक ठाक थी गया। हनीमून ते भी गए दोनों कुछ महीने बाद। नीलम सुनो जी गोपाल दे ऑफिस दा टाइम थी गया है आवाज जे वो नाश्ता तैयार है। बबलू की गले देखदा हां नू वल्ले उठदी कहनी। नीलम कोई गल नहीं अजे नवी है। बबलू मतबल तू ही करेंदी रासी। नाश्ता करके गोपाल ते बबलू ऑफिस गिए। नीलम गुड़िया को आवाज दित्ती ओ थल्ले आई कहनी वत नीलम नाश्ता करके कम वालिया को कम करा के दुपारी दीवी तैयारी कर गित्ती ता गुड़िया थल्ले आई। नीलम गुड़िया मैं आवाज दित्ती हाई बहुत देर थी गई तबीयत ता ठीक है। गुड़िया हां जी अज अख नहीं खुली अज किटी पार्टी भी वंजना है। नीलम किस वेले। गुड़िया 3 बजे। नीलम अरे हिक ता वज भी गया धागिन खाना भी वणिया पिया है। गुड़िया मेकू नहीं खावना उत्ते चली गई। ओ धा के तैयार थी के टुर पई सस को कुछ भी नहीं आखिया। उसको कोई मतबल कहनी घार दी कम दी सस दी प्यू दी आदमी दी कदी नाल खावना कदी नहीं अपनी मर्जी नाल रावना। गोपाल गुड़िया दी चिक चिक थीवन शुरू थी गई। गुड़िया कुछ भी समझन को तैयार कहनी आग दी मेकु कम नहीं थींदा मम्मी जी भी नहीं करना ते नौकरानी ही को रख गिरनो। गोपाल को बहु दुख थिया कि माँ ही सारे कम करेंदी है मेकु पता ही कहनी। गोपाल गुड़िया दी लड़ाई धीरे धीरे बद दी गई। गोपाल गुड़िया नाल नाल नहीं रावना चाहते हन। हिक जिहाड़े गुड़िया बहु चिखी बैग घिन के थल्ले आ गई अज मेकु छट के आओ हुण मेकु इत्थे तुसा सारिया दे नाल नहीं रावना। नीलम गुड़िया दहत थमिया आखण लगी तू मेडी नू है धी भी है तू जिथे वंजना है मैं तेरे नाल वेसा तू जिथे रावना चांदी है उथा तेरे नाल रेसा कोई गल कहनी। मां प्यो दा घर छट के आई है हुण तेरा घर ए ही है वत भी तू नहीं रावना चांदी मैं तेरे नाल वेसा जिथे तू वंजना है आख होटल चलिए। सोच गिन मैं के नहीं वंजना तू धी है धी नाल मां भी वेसी दिया घर छट के नहीं वेंदी। गुड़िया सब देख के जोर जोर नाल रोवन लगी मां मेकू माफ कर रे वो मैं ता तुसा नाल कदी गल भी कहनी कित्ती ना कदर कित्ती तुसा वद भी मेडे नाल टुरन दी इच्छा रख दे हो ए ता मेडी मां भी नहीं कहनी कर दी। तुसा मेकू रोज वड़ा बड़ा के खवाया कदी भी जावन लई मनन कहनी कित्ता जिस वेले उठदी हां तुसा कुछ भी नहीं आख्या हो रज। गुड़िया नीलम दे पैरा विच बा गई। नीलम गुड़िया को हां नाल लाया आख्या तू मेरी धी है नू कहनी दूजा असा औरता हां बेबे आग दी हाई नवा पौधा जद उखाड़ कर नवी जगह ते लगाया जांदा है ता उसको भी पानी देवना पौंदा है तू भी ता नवा पौधा है प्यार नाल सींचना मेडा कम है ताही ता तू घर विच फल देसी असा जिथा रावणा है नाल रावणा है। गुड़िया मां हुण मैं किथे नहीं वंजना तुसा सारिया दे नाल रावणा है। नीलम बहु खुश थई सबको आवाज दित्ती गोपाल किथे गया थल्ले आ सिया पियू नू आख असा सारे आइसक्रीम खावन वंजना है साड़ी गुड़िया।

असा निंद्र आलस दे दुश्मन कु पर हमार सट देख सूरज खड़ोता है तेरी चौखट निंद्र आलस दे दुश्मन कु पर हमार सट देख सूरज खड़ोता है तेरी चौखट।

साबण मल मल, साबण मल मल, कुछ कुछ सुबी धांदे ओ। मन ते मन मन मैल चढ़ी, कै हुकू घरोड़ा। साबण मल मल, कुछ कुछ सुबी।

0: श्रोताओं शुक्रिया बहुत बहुत, दोबारा फिर मिलसू।
1: ए हई डॉक्टर राजेश कुमार दा सिरायकी कावे पाठ ते हुन प्रोग्राम दे अखीर च सुनेंदे हां हिक सिरायकी गीत।

0: ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੀਤ ਤੁਹਾਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देश भर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक के लिए 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। विधेयक पर सदन में कल से चर्चा की शुरुआत की गई थी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रावधान किया गया है। चर्चा के दौरान हुए हंगामे के कारण सदन को दो बार स्थगित भी किया गया। इसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके पारित होने की घोषणा की।
1: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
1: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
0: अब ये विधेयक ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल संसद के इस साल के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में आज इस बारे में प्रस्ताव पेश किया गया। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर जिले के खेडली गुर्जर गांव से करीब 940 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बालिका सैनिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को टैबलेट दिए और बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस राज्य स्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री ने मिशन पढ़ो अभियान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को दिए गए संस्कार से ही उनका व्यक्तित्व बनता है। श्री शर्मा ने वीसी के जरिए प्रदेश के स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये प्रयास है कि स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे।
3: बच्चों की शिक्षा, उन्हें मिलने वाले सही

0: संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने लगी अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रदेश में व्यापक अभियान चलाने और विश्वविद्यालयों की ओर से गोद लिए गांवों को नशा मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने लोकभवन से आज VC के जरिए विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं से बातचीत की। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों के आसपास मादक पदार्थ बेचने वालों की पहचान कर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। राज्यपाल ने बताया कि नशाखोरी के खिलाफ 2 अगस्त से 100 सप्ताह का एक देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू होने जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसमें हर रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं, पैदल मार्च, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम होंगे। सतत विकास लक्ष्यों के तहत राज्य ने पोषण और पीने के पानी सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज SDG के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। उन्होंने विभिन्न विभागों को नीति आयोग और राज्य संकेतकों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वास्तविक और प्रमाणिक नवीनतम आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक निर्धारित 17 SDG और 248 संकेतकों पर राजस्थान को लगातार काम करना है। मुख्य सचिव ने दूरस्थ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की भी बैठक ली। इसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए 196 करोड़ रुपए से अधिक के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन का आज कोटा में ट्रायल किया गया। 16 कोच वाली इस सुपर फास्ट ट्रेन की रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड पर इसका परीक्षण किया गया। इसमें फायर डिटेक्शन, ऑटो लॉक, रेफ्रिजरेटर पार्सल सहित कई तरह की सुविधाएं शामिल है। अपनी उच्च ट्रैक गुणवत्ता और आधुनिक सिग्नलिंग तथा सुरक्षित हाई स्पीड कॉरिडोर के कारण कोटा मंडल एक बार फिर रेल तकनीक की परीक्षण प्रयोगशाला साबित हुआ है। इस फ्रेट EMU की सफल ट्रायल से माल परिवहन को आने वाले समय में तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था का माहौल है। धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने गुरुजनों, संतों, महंतों का अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। जयपुर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व होने के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का भी अवसर देती है। वहीं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले के बूसी और बालरई में संतों का सम्मान किया। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के साबला में संत मावजी महाराज की जन्म स्थली हरि मंदिर पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झुंझुनू के चंचलनाथ टेला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर

0: मतदाता परिसर में आकर्षक सजावट की गई। सलुम्बर जिले के सभी डाकघरों में सावन के महीने में गंगा जल उपलब्ध करवाया जाएगा। शिव भक्तों की सुविधा के लिए ये पहल की गई है। इसके तहत श्रद्धालु 30 रुपए में गंगा जल की बोतल खरीद सकेंगे। मांग अधिक होने पर डाकिये घर घर गंगा जल पहुंचाएंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आज इको टूरिज्म वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस मौके पर देश के सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से विकसित इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम रखे गए। राज्य के अभयारण्यों में बाघों पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ़ विषधारी के साथ ही एक नया टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है। वन विभाग के अनुसार इन पांचों अभयारण्यों में बाघों की संख्या 150 है। इनमें बाघ, बाघिन और शावक शामिल हैं। इस साल सबसे ज़्यादा 28 शावकों का जन्म सरिस्का अभयारण्य में हुआ। हाईटेक मॉनिटरिंग और एंटी पोचिंग अभियान से बाघों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही वन विभाग वन्य जीव कॉरिडोर मजबूत करने पर भी खास ध्यान दे रहा है। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में ट्रांस लोकेशन से भी बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देश भर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों, संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। सरहदी जिले बाड़मेर में आज गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। लीलसर स्थित जसनाथ धाम, चौहटन में डोंगरीपुरी जी के मठ, बाड़मेर के चंचल प्राग मठ और गंगागिरी जी के मठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिले में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में गुरु वंदन के कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान गुरुजन का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पुनर्विकसित बाड़मेर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन का ये कायाकल्प भारतीय रेल की आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित रेलवे प्रणाली के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के अलावा भारत के पर्यटन मानचित्र पर थार नगरी की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये रेलवे स्टेशन मरुस्थलीय इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर बाड़मेर में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं शहीदों की याद में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासन, सेना, वायुसेना, बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे।

0: पटेल बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वीरात्रा स्थित वांकल माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री पटेल ने बाड़मेर में सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कल धनाऊ इलाके में ओजिया गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय शिल्पकार खेताराम के घर पहुंचकर पारंपरिक पट्टू बुनाई कला का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि पारंपरिक पट्टू बुनाई बाड़मेर की अनोखी पहचान है। इस कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रभावी ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प को GI टैग और ट्रेडमार्क दिलाने की दिशा में प्रयास करने और इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग तथा मार्गदर्शन का भरोसा दिलाया। पिछले दिनों ग्राम पंचायत विशाला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विकसित भारत जीरामजी योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर पौधरोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मरुस्थलीय जिले बाड़मेर में पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल की 28वीं बटालियन की ओर से पौधरोपण किया गया। इस अभियान के तहत सरहदी गांव सरूपे का तला, मिये का तला और केलनोर समेत BSF की विभिन्न सीमा चौकियों और सरकारी स्कूलों में भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण करते हुए आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। दूसरी तरफ जिले में मॉनसून की बारिश के चलते इन दिनों विद्यालयों में एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया जा रहा है और विद्यार्थियों को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं मॉनसून की बारिश के मद्देनजर इन दिनों बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ और तिल जैसी खरीफ की फसलों की बुआई की जा रही है और किसानों तथा पशुपालकों में खुशी का माहौल है। बाड़मेर के सरकारी जिला अस्पताल में पिछले दिनों प्रसव सखी हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रवेश से लेकर डिस्चार्ज होने तक एक ही स्थान पर मार्गदर्शन, सहायता और समन्वित सेवाएं मुहैया कराना है। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पास भयो। प्रदेश री सरकारी स्कूलां रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियां रा बैंक खाता में स्कूल ड्रेस सारु 250 करोड़ रुपया री रकम भेजी जी। देश में नशा मुक्ति सारु 2 अगस्त 100 सप्ताह रो खास अभियान चलायो जावेला और गुरु पूर्णिमा रा पावन पर्व रे मौके आस्था रो माहौल गुरुजना संता और महंता रो सिरधा भाव मान करीचियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 ने आज लोकसभा पास कर दिनो। ये बिल माए पेपर लीक रा दोषियां ने 10 साल ताई री कैद और भारी जुर्माना रो प्रावधान करी चियो है। बिल माथा सदन माए काल नो चर्चा करी जा रही ही। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो के बिल माए बदलाव कानून ने और करड़ो बनावण और तुरंत न्याय दिरावण सारू करी चियो है। चर्चा रे दौरान भया हंगामा रा कारण सदन री कार्रवाई 2 दफा टालनी पड़ी। ये पाछे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो बिल पास वेवन रो ऐलान करती नो।
2: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
3: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
1: अब ओमिल संसद

0: मान लावण ले जावण ने आवता वगत माय तेज सुरक्षित और भरोसेमंद बनायो जा सकेला। आज गुरु पूर्णिमा रे मौके आखा राज्य माय जात्रु श्रद्धा भाव सागे गुरुजना संता और महंता रो आशीर्वाद लीनो। जयपुर माय राखी ज्या गुरु पूर्णिमा महोत्सव माय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती शामिल भया। इ मौके वे कहो कि भारत री संस्कृति माय गुरु री ठौड़ सब ऊंची मानी ची है। गुरु पूर्णिमा गुरुआ रा प्रति कृतज्ञता जतावण रो पर्व वेवण सागे गुरु चेलारी रीत ने आगे बधावण रोई मौको देवे है। देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत पाली जिला रा बूसी और बालराई माय संता रो मान कीनो। डूंगरपुर जिला रा साबला माय संत मावजी महाराज री जन्मस्थली हरिमिंदर माई मोटी तादाद माय जात्रु पूग्या। झुंझुनू जिला रा चंचल नाथ टीला माए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाइचियो और टीला परिसर माए सोहनी सजावट करी जी। चूरू रा स्कूल कॉलेज माए गुरु पूर्णिमा रे मौके सम्मान समारोह राखी चिया। सलूम्बर जिला रा सगड़ा डाक घर माए सावण माए गंगा जल मुहैया करायो चावेला। जात्रु 30 रुपया माए गंगा जल री बोतल खरीद सकेला। मांग बत्ती वेवन री सूरत माए डाकिया घर घर गंगा जल पुगावेला। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके आज इको टूरिज्म वेब पोर्टल री शुरुआत करी ची। हिमाथे देश रा सगड़ा बाघ अभयारण्य री जानकारी मुहैया कराई ची है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण री ओर विकसित करी चिया ई पोर्टल री केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली माए राखी जाए कार्यक्रम माए शुरुआत कीनी। प्रदेश माए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। राज्य रा अभयारण्य माए बाघा रा बारा माए पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजस्थान में रणथंबोर सरिस्का मुकुंद्रा हिल्स रामगढ़ विस्तारी के साथ ही एक नया टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है। वन विभाग के अनुसार इन पांचों अभयारण्यों में बाघों की संख्या 150 है। इनमें बाघ बाघिन और शावक शामिल हैं। इस साल सबसे ज्यादा 28 शावकों का जन्म सरिस्का अभयारण्य में हुआ है। हाईटेक मॉनिटरिंग और एंटी पोचिंग अभियान से बाघों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही वन विभाग वन्य जीव कॉरिडोर मजबूत करने पर भी खास ध्यान दे रहा है। रामगढ़ विस्तारी और मुकुंद्रा में ट्रांस लोकेशन से भी बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: स्कॉटलैंड रा ग्लासगो माए राष्ट्रमंडल खेल 2026 चल रहा है। 23 जुलाई शुरू भेर 2 अगस्त ताई चलन वाला आ खेलना माए 74 देशा रा एथलीट शामिल भे रहा है। कुल 16 खेल कार्यक्रम माए दिव्यांग खिलाड़ियां सारू पैरा स्पोर्ट्स ही शामिल है। और ब्यूरो समाचार डेस्क को
2: हर 4 साल माए वेबण वाला राष्ट्रमंडल खेला रा 23वां संस्करण माए भारत री नुमाइंदगी 124 सदस्या वाला दल कर रियो है। आमाए 78 पुरुष और 46 महिला एथलीट शामिल है जो न्यारा न्यारा खेला माए प्रतिभा रो दर्शाव कर रिया है। झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग माए कांसा रो तमगो जीतर भारत रो खातो खोलियो। मीराबाई चानुई होड़ माए सोना रो पहलो तमगो जीतर पूरा देश ने माथो उचोण करण रा लम्हा दीना। हाल ही चाल रही है और भारत रा एथलीट खुद माथे भरोसे सागे मुकाबला माए बनेड़ा है। खास बात आ है कि आवती दफा आ खेल गुजरात रा अहमदाबाद माए करिया जावण रो प्रस्ताव है और समापन समारोह माए भारत ने साल 2030 रा राष्ट्रमंडल खेला री मेजबानी रो जिम्मो सौंपियो जावेला। समाचार कक्षो सालेहा गाजी।
0: राज्य रा घनखर हल्का माए आवता 5-6 दिन ताई चौमासा री बिरखा चालती रेवन रा आसार है। मौसम विभाग 2 अगस्त ताई भरतपुर अजमेर जयपुर और उदयपुर संभाग माए बरसात वेवन रा आसार जताया है। जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ हल्का माए कालों बिरखा छांटा माए बढ़ोतरी रा आसार है। जोधपुर संभाग माए कठे कठे जोरदार बारिश री संभावना है। काल 5 जिला माए बरसात रो ऑरेंज और 33 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 लोकसभा माए पास फियो। प्रदेश री सरकारी स्कूलां रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियां रा बैंक खाता माए स्कूल ड्रेस सारू 250 करोड़ रुपया

0: छोटी रकम भेजी जी। देश में नशा मुक्ति सारू 2 अगस्त तू 100 सप्ताह रो खास अभियान चलायो जावेला। अर गुरु पूर्णिमा रा पावन पर्व रे मौके आज गुरुजना संतान और महंता रो मान करी चियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण श्रोता सुने अपना कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज आप पत्रोत्तर में अपने ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों के जवाब सुनेंगे नवीन सिसोदिया से।

0: राम राम नवीन भाई, राम राम
1: राम राम रामेश्वर भाई,
0: घना घना राम राम। कार्यक्रम सुन लाग रहे सगला ने भी,
1: सगला ने घनी घनी राम राम सा।
0: और कई दिन हो गया क्या थारी, अब लारला दिन अच्छी हूँ पत्र उत्तर कार्यक्रम ले रेडो नवीन भाई, तो भी माँ थारे नए आने की शिकायत भी ही और फरमाइशा भी ही।
1: देखो ते शिकायत और फरमाइश दोनों सुन लिया पा है।
0: हाँ बिल्कुल, आ बात तू कह दी कह नवीन जी की है कि इन्हें बिना काम धंधा खेत कैरी गमा फंस रहा है, पर जी थोड़ा सा अपने बेला उसी नहीं तो बे जरूर आसी और आज थी आ गया।
1: तो देख लो बुआई वगैरह तुम्हें कर दी
0: हाँ,
1: पच
0: बिल्कुल
1: में को
0: बिल्कुल,
1: चला फिर और की दिक्कत है।
0: नहीं नहीं बढ़िया है। और आज आपां बायलोगांग जगह कागज है, जगह संदेश है, मेल है, बे बांचांगा, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा भी है ना।
1: हाँ गुरु पुण्य है सारू बड़ी बात है रामेश्वर
0: बिल्कुल।
1: भाई। देखो गुरु पुण्य पापा गुरुआ की बात कर सियाँ सागे आपा पत्र आया है, ईमेल आया है, संदेश आया है, ये सारी चीज़ें पढ़ांगा सागे थोड़ी घनी बात आप कोई खेती बाती की भी
0: बिल्कुल बिल्कुल करांगा।
1: कर
0: और
1: सियाँ।
0: बिया तो आपने जीवन गवा की है नवीन भाई, आपने जका माता पिता है बे पहला गुरु हुआ है ना,
1: हाँ
0: और बियों बाद गवा फिर आपने जका बनानिया गुणानिया जका गुरु जी है स्कूल
1: वे
0: वाला
1: दूसरा
0: बे
1: हुआ
0: हुआ
1: है
0: है।
1: अरबियों के बाद में ब्याह हो जाए कौन हो जाए गुरु। अरे
0: फिर
1: गुरु फेर
0: सियाणा
1: भी
0: हो,
1: रहे समझो कौन
0: सियाणा
1: के
0: हो
1: है
0: और
1: रामेश्वर
0: समाज का मां जका अपने सच्ची बात बतावे, सच्चो राह दिखावे, बे अपना जगह संगी साथी परिवार का जगह लोग है, बे भी अपना गुरु
1: देखो
0: ही हुआ है।
1: रामेश्वर भाई गुरु है नहीं गुरु की कोई उम्र को नहीं हुआ है।
0: को नहीं हुआ
1: आप यहाँ
0: सा।
1: सोचा नहीं कि गुरु अपने उम्र में बड़ो होना चाहिए बुड्ढो दिखना चाहिए आ बात गलत है। एक टाबर अपन अगर कोई चीज सिखा दे नहीं तो वो भी अपना गुरु हो गया।
0: बिल्कुल, चाहे वो उम्र में अपनों से छोटो है चाहे बड़ो है,
1: हाँ
0: कोई भी अगर इसको ज्ञान देवे जगह को अपन पतो ना है और भी ज्ञान सुन के है का अपनों जीवन आनलो सरल हो जाए तो वो अपनों गुरु ही मानी चाहिए सा।
1: हाँ अपनी जी की जीवन की दिशा है बा अगर सही हो जाए तो मतलब वो अपना गुरु है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बिया तो देखा नहीं तो गुरु जो को है वो केवल किताबी ज्ञान ही कौन देनी, जीवन जीना जो को सलीको है, बिंगा जगह संस्कार है, फिर आने वाले टाइम में जीवन में किसी अब कहीं आस के बने जिकी आपने निजरा में लिया के रखे नहीं तो भी गुरु ही हुए।
1: सही बात है
0: और
1: सर
0: एक दो ये कह धरती जैसो धीर गुरु, कह
1: वाह।
0: धरती जैसो धीर गुरु अरे अंबर जैसो ज्ञान, अरे जिन माथे गुरु हाथ धरे धन्य हुए वो इंसान,
1: वाह सा तो
0: है
1: ए
0: ना।
1: बात पे आप एक गुरु रो भजन ही सुन लिया
0: हाँ बिल्कुल, सीमा मिश्रा की आवाज गया वहां
1: वाह
0: आप एक
1: सा।
0: भजन सुन लिया, लियो थे भी सुनो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: 8233 पर कॉल करें।
1: बिल्कुल नवीन भाई, आप सीमा मिश्रे के वाजगा में भजन सुनायो।
2: एक है कि देखो गुरु जी को है,
1: हाँ हाँ,
2: सदगुरु होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। और जीवन का एक गुरु ईश्वर होना चाहिए जो को अपने अब खाई के टाइम का मां सही राह दिखा दे। पर आज आपने कन संदेश मेल और कागज भी है, तो
2: सबसे पहले शुरुआत करो। अपन राह संदेश सारी पकड़ ले।
1: हां संदेश आन दियो।
2: तो देखो आपने कन जी को पहलो संदेश है वो ओई आयो है तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत डॉक्टर ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार साहिल राघव मुरारीलाल शर्मा मदनलाल शर्मा फूसाराम मील और महावीर लोहरा अंग पोतो है पंकज सारस्वत।
1: अच्छा
2: एक है कि जिको तारीख 22 ने थे तोड़ियो नाटक सुनाया है और 25 तारीख ने जिको कैंचो खाद की बात बताई। 25 तारीख ने तो कैंचो खाद वाली बात तो मैं आज कदी नहीं बताई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: बात तो सही है। देखो देखो कैंचो खाद काम की है। अरे एक है कि दो तीन आवाजा में जिको चौपा लाना चौखोला देखो आज दो आवाज तो आएगी।
1: बिल्कुल आज अपन दोनों
2: सागी देवीदास पूरा गांव में जिकी आपने बातचीत हुई नी खजूर अरे फार्म की बाग की।
1: अच्छा
2: श्रीपाल जी कर ले रहे हैं गया जी की बाहर बहुत बढ़िया लगी।
1: बिल्कुल आंगो मोकलो सारा धन्यवाद दिमाग के कार्यक्रम नितबंदियों सुनो है पूरो सुनो है।
2: हाँ देखो मोतलम महाराष्ट्र सु विजय सुरलकर रतन माला सुरलकर ओम कुमार सुरलकर और आरती कुमारी है।
1: अच्छा।
2: एक है 25 जुलाई रोजी को चौपाल कार्यक्रम में कैंचो खादारो वो ने बढ़िया लागियो सागे ही तैयार करने की विधि बता दी उनकी बिक्री बता दी खेती बता दी सारी बात थे बताई और लघु उद्योग भी शुरू कर सका।
1: हाँ बिल्कुल
2: आ बात भी आप बताई तो आना बढ़िया लगी।
1: सागे
2: एक है की अनुदान की बात भी बता दी भाभी हमारे सागे काम की बात है। अब एक है की बाता जी किसान भैया खतर थे बताओ जी की सारी लाभदायक है प्रेरणादायक रही हमारे वास्ते और इंग सागर सागर श्रीपाल भाई जी और भूरो भाई जी ने भी दिलो भार दी है।
1: बिल्कुल बातें पूक्ति होने रही है नवीन भाई
2: पूक्ति हुए देखो और आगे देखो गांव का मंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया प्रमिला ढुकिया ज्योति शिवम ढुकिया सरिता सचिन अमन्ना तमन्ना सायना विष्णु ढुकिया और दोईती है ईवा धारणिया
1: धारणिया ए छोटिया मोटिया सब रल मिल के सुने
2: आदोती मला के छोटी सी नान की
1: छोटी सी नान की है।
2: चौपाल पेश करना रहा भाईला ने मोगली मोगली राम राम दिए।
1: बिल्कुल आने भी राम राम
2: तो अपना भाईला ने भी राम राम है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो एक है कि चौपाल सुनो जी की बात है आप बढ़िया लगा है ना श्रीपाल जी सागर जी को चौपाल सुनो वो भी आना चोखो लगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी बहन बढ़िया लगी है और सागे डॉक्टर साहब से हिंदी में जिकी प्रश्न पूछा थे।
1: हाँ हाँ
2: वे भी बढ़िया लग गया
1: आपने संजय जी जका संजय वेद जी हवा हिंदी में प्रश्न पूछा ना अच्छा लग गया ई वास्ते अंगो मोकलो सर धन्यवाद सा।
2: देखो कदे कदे के हिंदी भी आनी चाहिए।
1: आनी चाहिए सा आनी चाहिए
2: मैं को अगली बार अंग्रेजी में पूछ ले सा। तो आ बात आंगी बढ़िया लगी आपने। देखो पत्रोत्तर कार्यक्रम चौपाल सुनने वास्ते एक और आपने कने जी को संदेश आयो है। एक है कि टोडियो थे सुनायो मैंने हमारी फरमाइश पूरी कर दी।
1: अच्छा टोडियो बिया सुने हो या टोडियो नाटक सुने हो
2: टोड़िया ने भी किया सुनी जाए तो
1: के बार बोल भी दे टोड़िया ना बोल भी तो ना
2: मेरी बात सही है थारी। देखो एक है 28 जुलाई ने पृथ्वी जी साथ संदे वैद्य जी की भेंटवार्ता बाना चौकी लगी।
1: बिल्कुल
2: पृथ्वी जी देखो जी उर्वरक की बात है बहुत बढ़िया बताई।
1: हाँ जानी जान है मैं तो बिल्कुल।
2: हाँ बेके बहुत सालों उर्वरक का कोई काम करे तो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो एक है कि देवीदासपुरा किसान जी की बंग सागर श्रीपाल जी बातचीत आना चौकी लगी खजूर के बारे में बढ़िया बात ही आप बताइए आपने बात चक 58 NP रायसिंहनगर से सुल्तान राम मलखट सरस्वती देवी मलखट हरवंश लाल बनवारी लाल गोपी राम ललित नहेंद्र नरेंद्र और मीनाक्षी मलखट और सारा मलखट परिवार राम राम दिए सा।
1: बिल्कुल आने भी मोकली सारी आपने दोनों गाने सुन घणी घणी राम राम।
2: और शुभकामना भी और आईडी है बट आप सिर्फ प्रतिक्रिया ही पढ़ांगा शुभकामना भी है ये चौपाल पत्रोत्तर कार्यक्रम वास्ते अमरपुरा जालू खाट से जगदीश चंद प्रजापति रंग परिवार की है। सागे देखो खजूर का बाग लगाने की विधि जी की है आने बढ़िया लगी ये आपने बता रहे है गाँव अरायण से।
1: अच्छा
2: बनवारी लाल जयपाल विमला सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल और पूनम चालिया ए कह के जी की असिंचित भूमि में भी लगाने की थे विधि बता दी। बा बहुत बढ़िया है देखो खजूर को वही तो फायदा
1: खजूर को फायदा खारा पानी में भी बहुत बढ़िया
2: खारा पानी 7000 जी की TDS हुआ है।
1: हाँ हाँ
2: बटता ही भी हो जी को है नी पकड़ ले खजूर
1: मुनाफा को सौदो है अपना भाई लोग लगावा तो
2: मैं तो कूं मेज के दिन गया नहीं बातचीत करना खजूर बाग में तो एक साहब और मारा सा गया।
1: अच्छा
2: तो बे तो बड़े देख गए कह दियो कि मन्नत तो सिखाओ।
1: हाँ नहीं
2: क्योंकि बे कह मारकन तो जमीन पड़ी है चूरू में और मैं तो लगा सा
1: नहीं आपने अठा गंगानगर क्षेत्र का हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी बरानी क्षेत्र है खारो पानी है। हाँ। तो बट्ठे भी आपने पनप सके है खजूर
2: भाई एमें इतनी को ज्यादा लागत को नहीं सागे सब्सिडी भी मिले है
1: सब्सिडी मिले है और ज्यादा खेचल भी कोनी
2: लगा के छोड़ दो और बे थोड़ी बहुत खेचल कर रहा कोई सी बात कोनी।
1: हां यहां तो करनी पड़ेगी
2: तो की हुए भी कोनी
1: नहीं नहीं हाथ पर हाथ धरया तो कुछ कोनी हुआ नहीं लेकिन खेचल करनी पड़े पर यहां आड़ तोड़ जकी खेचल ना बंग जरूर
2: देखो भोपालगढ़ राजस्थान सु धर्मेंद्र छिपा

0: कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार जी का है। एक है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ का सगला ही कार्यक्रम है जिका राज्य राज्य सुना है और फरमाइश गीता मुझे को कार्यक्रम में गीता गजरू और किसी संबंधी जानकारी ये सब आना बढ़िया लगे सा। ठीक है, मौसम को जो तो पूर्वानुमान दो वो भी एक है कि बढ़िया रहे वहाँ कई बार पता लग जाए कि निराई गुड़ाई करनी है क्या करनी सारी चीजें।
1: नहीं नहीं आप मौसम विभाग की जी की जानकारी आपने पूर्ति हुए तो आप आते कर दो पूर्ति और हिसाब से खेत करिए काम धंधा संभालना भी जरूरी है।
0: देखो उज्जैन जी को जिलो है
1: हाँ
0: बट अगर उन हेल्स है मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़ भोला वाक्तरिया प्रवीण वाक्तरिया रियांश वाक्तरिया और प्रतीक वाक्तरिया को जी को संदेश आया वे कह कि चौपाल कार्यक्रम माना है खेतीबाड़ी की जी जानकारी दो भेंट वार्ता दो सारी लाभप्रद
1: तो धाकड़ साहब ने भी आपने कहानी से मोकली मोकली धाकड़ राम राम
0: वो एक बहुत बड़ो मैसेज आए।
1: अच्छा
0: किंग है वो रामगढ़ कैंट से
1: अच्छा
0: महेंद्र मोदी ठाकुर साहब लिखे।
1: अच्छा
0: के लिखे क्या चौपाल तुसी ग्रेट हो।
1: बिल्कुल सा थारी मेहरबानी थारो ने स्ने प्यार मोहब्बत है।
0: देखो इतो ही मैसेज है वो बात तो देखो बात तो बड़ी है नहीं
1: बात तो बड़ी है
0: कम शब्द में बात बड़ी कह दी।
1: हाँ नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया बहुत
0: देखो चौपाल कार्यक्रम अच्छो लगे और खासकर किसान जी थे खेतों की जानकारी दो बढ़िया लगे। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन बोली है बात।
1: अच्छा
0: गांव हीरावाड़ी फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा सरवण रिणवा हंसराज भाटिया मनीराम रणजीत राम किरोड़ीवाल सुरेंद्र भादु
1: अच्छा
0: एक है राम राम रमेश चावरिया जी आ लो रामेश्वर जी
1: बिल्कुल बिल्कुल जोड़ी मान रहा कि और आदि थे राख लो ने मेन जी
0: ना
1: आदि दे दो
0: मेरा नाम को नहीं
1: है नहीं नहीं थाना आपने दोनों याद दिया दियो सी ना
0: चलो आदि आदि
1: हां
0: है एक है मैं चौपाल कार्यक्रम रोज सुना 28 तारीख जी की संजय बैद जी की जी की पृथ्वी सोलन की सागर बातचीत थी बाना चौकी लगी। ठीक है
1: धन्यवाद सा।
0: हाँ एक है कि कम जी का पोषक तत्व है बामा भी थे अधिक उपज किया ले इसका ये बातें में चौपाल हुई समझा
1: बिल्कुल।
0: ठीक है एक कह रहे हैं कि एक आगे यहाँ मांग भी है कि अब सावण का महीने में थे लोकगीत जी का है सावण के हिसाब से सुनाया
1: नहीं नहीं अब सावण आपने किया कि लागू नहीं तो अब सावण का गीत भजन जो है बेबी चलाशा थे कार्यक्रम नितबंदी सुनता रहो।
0: एक है मैं पिछले दिन हास्य नाटक सुनो सेल्फी सुख।
1: अच्छा
0: तो वो भी एक है कि मैंने चौपाल में दोबारा सुनाओ तो सेल्फी सुख तो हिंदी को अभी यहाँ तो
1: हिंदी को नाटक है,
0: है?
1: तो आपने
0: तो सुना दे आप हिंदी में
1: कार्यक्रम सुरतगढ़ का जितना भी प्रसारित हुआ ना बामा आपने वो जो को नाटक है वो थाने कोई ना कोई कार्यक्रम में जरूर सुनने मिलो सुनियो सा।
0: देखो रामेश्वर भाई प्रवीण सोनी कलावती सोनी और जगदीश जोरी गुजरात गांधीग्राम से अपन ने मैसेज करियो है कि चौपाल कार्यक्रम में लोकगीत और खेतीबाड़ी की जानकारी जी की आना बहुत ही चौकी लागे फिर आई बात लिखी है चौपाल कार्यक्रम तुसी ग्रेट।
1: हाँ बात तो बड़ी सरस लिखी छे
0: सरस लिखी छे
1: आंगो मोकलो सर
0: ना मतलब गुजराती भी आवे है
1: ना अपने की है कि पड़ोसी है तो क्यों ना फर्क तो है इस चीज को।
0: चलो ये बात पे फिर कल वे थेपला फेपला ले जाए
1: हाँ फापला
0: एक है देखो नमस्कार दियो है अपने बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन एक है कि चौपाल कार्यक्रम में जिकी सचमुच में ज्ञानवर्धक जानकारी माने मिले बामने बहुत ही बढ़िया लगा सा।
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रस्तुतकर्ता और टीम ने हार्दिक बधाई और शुभकामना दी है।
1: बिल्कुल थाने भी मोकली सारी शुभकामनाएं।
0: अब देखो चौपाल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता ने नमस्कार दियो है सागई ठीक है और वो मैसेज जिको है वो आए हुए मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब
1: अच्छा
0: बाजार रोड मंगीसापुर से
1: ओ कठे सी का मंगीसापुर
0: मंगीसापुर तो मैं गैडो तो कोनी
1: कड़ी दूर दराज है लेकिन आपने अब की बार ना जिलो जो को है और राज्य जो को है वो जरूर मांडियो सा थोड़ा सा माने पतो ला जाएगा मारी आवाज की हवा कट तक जाए।
0: हाँ आप ढूंढ ले सा।
1: हाँ
0: मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा सबिस्ता पलक लुबना और यश मंसूरी ये जगह सदस्य है।
1: हाँ हाँ
0: ठीक है। अब देखो सागी आपने मैसेज आयो है अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा और गाविया मल्होत्रा एक एक चौपाल कार्यक्रम बराबर सुना में अरे जी की हर मुलाकात है बमारा दिलाने छूजे।
1: बिल्कुल कार्यक्रम सुनता रोसा थाने और भी अच्छी अच्छी जानकारी जी के बाद सुनने मिलेगी।
0: वो संदेश आयो है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गज भी है लिखियो है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ से जी का कार्यक्रम प्रसारित हुआ है ये सारे चोखा लगा है और चौपाल जी को है मैं खेती की जानकारी आने बढ़िया लगा।
1: बिल्कुल चौपाल का खेती के अलावा आपने घर गृहस्थी की जी की बातें हैं गांव गुआड़ की जी की बातें हैं भी हुआ ऐसा है ना।
0: एक नरेश वर्मा जी लिखियो कि फरमाइश मत भेजे।
1: नहीं बिल्कुल आपने नरेश भाई साहब है ना भी कंट्रोल में बैठे
0: हैं भाई साहब डंडो लिया बैठे हैं सागे। देखो देवेंद्र रोकना जलंधर से लिखे है कि माना चौपाल कार्यक्रम बहुत ही चोखो लागे सा माने बढ़िया बढ़िया जी का गीत है सीमा मिश्रा का थे सुनाया करो तो सीमा मिश्रा को भजन देखो मैं देवेंद्र रोकना जी
1: रोकना जी ने और ये तो बीए की है जमा रेडियो की जड़ा में बैठा रहे साहब।

0: होती है ना.
1: हाँ पंजाब जाए हैं तो राजस्थान ही थोड़ी छूटा सा
0: हाँ
1: है।
0: सही है सही है सही है.
1: चौपाल कार्यक्रम में जो जानकारी दी जाती है ये हिंदी में लिखी है, मैं तो
0: अच्छा
1: कोई बात नहीं आप आए बदल दे।
0: बदलते हो.
1: आनंद जी की बहुत ही बढ़िया शानदार और जानदार लागा है, गाना भी बहुत खूबसूरत लागा है और आकाशवाणी सूरतगढ़ का सगले कार्यक्रम आने बढ़िया लगा है। लिखण आ रहा है पश्चिम सिंहभूम चाईबास झारखंड झारखंड से है,
0: झारखंड से है, दूर से है वाकई में.
1: बहुत दूर सा है।
0: तो
1: जद्दी
0: अंग
1: जद्दी वो नाम के थोड़े
0: अच्छा
1: जो
0: आगे भी यहाँ कुछ लिखे है.
1: आगे लिखे श्रोता हूँ नाम लिखे सागे,
0: अच्छा
1: शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, ये बस आई बात कही है कि मैंने चौपाल जी हुआ चौखो लागे
0: बिल्कुल
1: सा
0: मोकलो सारा
1: है।
0: धन्यवाद साहब, कार्यक्रम सुनता रहो.
1: तो अपा थोड़ा और संदेश पढ़ दें बिंग बाद में एक बढ़िया सुहाना गीत सुना शाह
0: हाँ भजन सुना देंगे
1: भजन ही
0: रविंद्रनाथ को तो.
1: सुनाओगे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
1: आज तो भैया गुरु पूर्णिमा है तो
0: हाँ गुरु
1: है।
0: पूर्णिमा है.
1: चौपाल कार्यक्रम पेश करता है जलंधर सिटी पंजाब से सोनू रविराज और गुलशन लक्की जी को है बे प्यार भरी नमस्कार दी है, आप स्वीकार कर ली सा।
0: बिल्कुल आने भी आपने कहने से मोगली सारी रामा श्यामा.
1: गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, आकाशवाणी सूरतगढ़ गाना सगला कार्यक्रम खासकर चौपाल और खेती गज का कार्यक्रम है, वह बहुत ही चोखा लगा सा
0: बिल्कुल
1: है।
0: आंगो भी आप मोगलो सारा धन्यवाद देवा सा, कार्यक्रम सुनता रहो और प्रतिक्रिया जी की अब लगभग मानता रहे करो.
1: जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल, ये लिखियो है कि माने प्रोग्राम जी को है पसंद आया सा।
0: बिल्कुल आंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद के आपने दूसरे राज्य का वहां बैठ के अपनी दूसरी जगह भाषा है बिंग वहां
1: देखो
0: बैठ
1: रामेश्वर
0: के.
1: भाई
0: बिल्कुल आपने जगह भाषा को जो कार्यक्रम आना अच्छा लगा तो बड़ी बहुत अच्छी बात है सर.
1: नाम तो लिख दिया इता, बात लिखी एक छोटी सी है,
0: अच्छा
1: अब बात तो गलत
0: नहीं
1: है।
0: आप बात तो आना कैसे हाथ जोड़ के क्या थोड़ी सी प्रतिक्रिया जी की बा लंबी चौड़ी मांड दे करो. और बीच कार्यक्रम किशो कह कुकर है किए हैं बिल्कुल थोड़ा बेरो पड़ जाए.
1: चाहे चौकी चाहे माड़ी जो भी है जिगी लिखो तो
0: हाँ
1: सही
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल सर.
1: एक है कि चौपाल कार्यक्रम के प्रसारक जी का महोदय माने नमस्कार दिया है कि मैं रोज आकाशवाणी सूरतगढ़ कॉटन सिटी चैनल सुना माने बहुत ही चोखो लागे सा, मिट्टी दी खुशबू फोन इन कार्यक्रम आने बहुत बढ़िया लागे, सागे चौपाल बढ़िया लागे सा।
0: बिल्कुल
1: कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश ऋषिता।
0: तो अंगो भी आप मोकल सरो धन्यवाद दीवान साहब.
1: एक और आपने संदेश आया है, एक है कि मैं आज तक चौपाल कार्यक्रम सुने तो कोनी
0: अच्छा
1: पर आज मैं पहली बार सुन सु
0: अच्छा
1: है और इंग बाद में मैं अगली बार जी है
0: प्रतिक्रिया लिखियो.
1: प्रतिक्रिया मान दे
0: बिल्कुल
1: सु।
0: सा जरूर मांडी
1: तो
0: उड़ी करेगी माने.
1: ए लिखनिया है सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग और सागे आगे सोनाली नारंग।
0: अच्छा तो कार्यक्रम आज सुनियो सी और आज सुनागा तो बिंग साहब से प्रतिक्रिया जी के बाद जरूर मांडियो सा थारे प्रतिक्रिया की उड़ीक रहेगी.
1: देखो सागे एक और आपने संदेश हो गया खत्म।
0: अच्छा तो संदेश खत्म हो गया तो अब चौक है मेल पढ़नी शुरू करा है या फिर थे कोई
1: एक आधी मेल तो पढ़ी दियो,
0: और या फिर थे आप एक भजन सुना दें शुरू
1: चलो
0: को.
1: पहली
0: थोड़ा
1: पहली एक
0: हाँ
1: भजन हो जाए
0: एक भजन
1: फिर
0: हो
1: मेल
0: जाए
1: पढ़ लेंगे।
0: बिल्कुल सा. लियो सुनो मनीराम और बांग साथियों गाइडो ओ भजन.

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिल्कुल नवीन भाई, आप मनीराम और बांग साथियों गड़ो भजन सुनायो,
3: बहुत ही फूट रो भजन हो सा।
2: और आपने ते मेल जिकी है बे पुगड़ी और असैशो पहली मेल जिकी है बा पुगी है गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ छू और लिखने वाला है वेद मिड्डा और अलका मिड्डा।
3: के लिखे सा?
2: बिल्कुल आ लिखे है का रामेश्वर भाई और नवीन भाई ने मारा कान छू घनी घनी रामा श्यामा और कार्यक्रम जो है वो बढ़िया लगे और आ कुछ आपने कविता के रूप में दोहा के रूप में बातें लिखी है
3: तो बांच दो।
2: बिल्कुल आ लिखे है कह कुण बड़ो कुण छोटको अर मत करो ईशो काम अर कर्म देख सब जीवांगा न्याव करे ला राम। कह सेवा कर ले माता पितारी अर कर ले पिता रो मान अर तीर्थ सगड़ा चरणा में ईशु बड़ो नदान। कह खेत हरियो चोखो लागे अन्न देवे अपार ए भयांगी प्रीत बनावे घर ने स्वर्ग द्वार। कह बाग बिना ने खेत री कह बाग बिना ने खेत री राख सके कोई लाज अर भया री अनबन छु सदा हंसो प्रयो राज। का बडेरा री बात सुन हिड़ो हर्षे भाए अर मिठी बाणी बोलनो अर संसार सुहाए। बड़ी फूटरी बात लिखी है कह आपनी जकी आपसी नेह स्नेह परिवार को है आप भिड़ा बैठा हाँ और एक दूसरे को जो को दुख सुख सिर कराना तो वो की है कह अपने भाइयों बिचाले अपने मात पिता बिचाले अपने परिवार बिचाले होना चाहिए ऐसा छोटी मोटी कोई मीन में एक जिकी है ना बा कते नहीं रखनी चाहिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल वो तो के आपने जिकी गुरुआ की जिकी बाणी है बे में भी आई बातें बताई
2: दी आई बात बताओ बिल्कुल सा सीख तो आई हुआ है
3: सीख तो आई हुआ है कि जिको थारो मेल मिलाप है जिको थारो प्यार है वो थे बनाए रखो।
2: बिल्कुल परिवार कई बार हो जाए नवीन भाई के बेड़ा पड़ा बांडा के रहनी छाणा मन का खड़क जाए टेम्पर संभाल ले नहीं
3: तो खड़क जे जिकन पाछा संभाल के भी रखना पड़े।
2: बिल्कुल बिल्कुल छोटी मोटी कोई किरण पिरन हो जाए मीन में एक हो जाए तो भी ने आपने बेड़ा बैठ गए सुधार लेना चाहिए और ज्यादा जो को मन बुटाव जो को है ना वो लंबो चौड़ो नहीं रखना चाहिए
3: रखना भी नहीं चाहिए।
2: बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने नाई वाला छू वेद मिड्डा और अलका मिड्डा जी तो आपको मुकुल सर धन्यवाद देवा
3: धन्यवाद
2: आपने तो आ मेल पुगी है और लिखने वाला है नाम जो को आपनों आपको जो को नवीन भाई लिखियो है जेतपुर छू वेद जगदीश उपाध्याय बिमला देवी उपाध्याय धर्मवीर मंजू उमा शंकर पार्वती नेहा रंजना उमेश।

0: मानी और पुनीत,
1: वाह सर,
0: और हल मिल के लिखी है, और लिखी है कि कार्यक्रम चौपालगा सगड़ा साथियान मारा का निशुंग घणी घणी रामा श्यामा और गुरु पूर्णिमा की कह सगड़ा देशवासियों ने बहुत बहुत बधाई।
1: थाने भी बहुत बहुत बधाई सा।
0: आगे भी लिखे है कि चौपाल कार्यक्रम में कह लगो लग सुन ला रहा हाँ माना घणो फूटरो लगे, और चौपाल में कह हमारी पहली मेल ऐसा जरूर शामिल करियो और हमारी फरमाइश भी पूरी करियो। पर फरमाइश जकी है बाकी लिखी है पतो कौन लगे नहीं
1: आगे फरमाइश आई है हमारी मेल जिके
0: शामिल, हाँ, शामिल होगी सा
1: है नहीं।
0: और इनके अलावा का नाटक है, भजन है, गीत है, जानकारियां जिके वे चोखी लागे, और थारी बोली तो का माने घनी प्यारी लागे सा, माने इया कार्यक्रम की का हमेशा उड़ी करेवे, कल सावन लाग जैसी थे माने के मोरियो रे झट चौमासो लागियो रे गीत सुनाइयो के
1: तो ढूंढनो पड़ सी
0: ढूंढनो पड़ सी और कार्यक्रम सुनता रहो सा अपने वेजी, तो थाने कार्यक्रम जो है वो सुनूंगा तो भी मा थाने एक गीत जकाया जरूर सुनने मिलेगा और मेल पूग तो करियो। इन वास्ते थारो मोकलो सर धन्यवाद। गाम उम्मेवाड़ा शू नोरंग सुथार, विष्णु सुथार, नीरज सुथार, योगिता सुथार, जया सुथार, सुमन सुथार, हाँ भी अपने आकाशवाणी परिवार ने रामा श्यामा लिखिया, ये लिखा है गीतारो गजरो जो कार्यक्रम है वो बढ़िया लगे, आकाशवाणी का जितना भी कार्यक्रम भी सगड़ा माने पसंद आया, और गुरु पूर्णिमा की हाँ भी आपने शुभकामना भेजी है,
1: आना भी बहुत सारी शुभकामना।
0: वो आपने पुग्यो है मेल अगलो और लिखने वाला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ शू, और लिखियो है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और अंग सागे है कालकाशु सुपचंद्र बजाज और साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आ लिखियो है कि कार्यक्रम पेश करने वाला ने महारा कहानी सुन घणी घणी रामा श्यामा, और कह थियो का मेल जो है मारो शामिल करियो, रिंग ऊपर का कोई गीत जो है वो जरूर सुनाइयो है ना, तो अंगो भी आप मोकलो सारो धन्यवाद देवा सा कई आगे भी कार्यक्रम सुन गए, और मेलगी जकी आपने खानू है ना खिड़की भी आपने प्रतिक्रिया जकी बात थोड़ी सी लंबी चौड़ी मांडे करो ताकि कार्यक्रम संबंधित माने भी पतो लाए जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक बात और कहूँ, मैं तो आकू कि जिका प्रतिक्रिया मांडनी है नी बे आपकी प्रतिक्रिया मांडया करो।
0: बिल्कुल।
1: अरे ये नहीं कि भाई मैं थारी लिख दूँ और थे बेंगी लिख दूँ और ये के कि
0: नहीं नहीं आपने आपा तो प्रोग्राम में आई बात के करा नवीन भाई का हमेशा प्रतिक्रिया जी के बाद खुद प्रोग्राम सुन गया और मांडा का तो ज्यादा पतो लगा को माने भी और ज्यादा थाने भी इन चीज को कार्यक्रम को सुनने को आनंद आवे।
1: आ देखो एक मेरे को मैसेज हो रहा है कि संगी ये लिखा है बसंत विहार सूरतगढ़ शू जगदीश सैनी, आशा सैनी, गोविंद सैनी, नीतू सैनी और तनिषा सैनी, ये भी लिखा है कि भाई चौपाल जी को कार्यक्रम है आने बहुत ही फोटो लगा सा।
0: बिल्कुल आने भी आप मोकड़ो सर धन्यवाद देवा, ये अपना नितबंधी श्रोता है और हाँ। काफी समय से आपने कागज मेल जगह भी भेजन आ रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब बात करें आप अगले मेल की, और मेल पुग्यो है आपने लिखने वाला है आपको जो नाम है वो लिखे लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी, और आ लिखे रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर शू, ये लिखे कि चौपाल पेश करने वाला महारा कहानी शू रामेश्वर भाई ने और नवीन भाई ने घनी घनी रामा श्यामा और गुरु पूर्णिमा की का हार्दिक शुभकामना। अरे आगे भी ये लिखा है नवीन भाई का मारो प्यारो चौपाल माने बड़ो दाय आवे, शुक्रवार ने गीतारो गजरो है, शनिवार ने चौपाल में तीन आवाजा में सुनो तो बड़ो अच्छो लगे, कार्यक्रम में केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की जानकारी दी, भाभी बढ़िया ने पसंद आई, और सोमवार ने कह देदासपुरा गज का किसान है बासुन श्रीपाल जी और नवीन जी सिसोदिया जी की बात खजूर की बातचीत ले गया खजूर के बारे में, भाभी ने बड़ी पसंद आई।
1: आ बात तो देखो रामेश्वर भाई, खजूर हरी बात अर्जी की वर्मी कंपोस्ट हरी बात है, मैं देखिए कि घने लोगों ने पसंद आई।
0: बिल्कुल, वो बड़ो फायदा को सौदा नवीन भाई के, इनमें कोई ज्यादा खिचड़ भी कोनी, ज्यादा कोई पीसो टक्को भी कौन लागे नहीं, और आपने थे बताया कि इन ऊपर का अनुदान जो है वो भी मिले।
1: मिले बिल्कुल।
0: तो बिल्कुल भाई लोग जो कहे इन तरफ आपको जो पाउंड है ना वो जरूर बढ़ानो चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो आपा पुरानती खेती जी की करा जी की चोखी बात है, पर आपने धीरे धीरे जी की नई चीजें हैं बांगी तरफ भी कदम बढ़ानो पड़ सी, और जिका लोग ए कदम बढ़ाया है एक जिका हिम्मत करी है बे बहुत ही बढ़िया रहे है, बांक ने घणो ही जिको है लाभ भी हुए है, आर्थिक लाभ भी हुए है, और बने दूर दूर लोग पूछना आवे कि भी थे लोग किया काम करे है। अब आप आगे बात करें अगर खजूर फार्म की भी बात करें तो आंक ने दूसरा प्रदेशा से बीज का लोग है सीखने वास्ते आने लग रहे।
0: बिल्कुल, आपने तो किया कि कंडारपुरी बैठे है तो आप तो इनको फायदो जरूर उठानो चाहिए। अगर दूर दराज भाई लोग किसान भाई लोग जो कभी आगे फायदा उठाए तो भाई बात है ना, कई बार आपा नेड़े कोई चीज आपने पड़ी है तो बा अपन कौन सुहानी दूर लीजिए की चीज है बात ज्यादा अच्छी लगे, तो आपने तो बिल्कुल नजदीक में है तो अपन फायदा उठानो चाहिए।
1: और रमेश्वर भाई एक अगर आदमी यहाँ चाहे नहीं कि माने मान लो खजूर उगाना ही है और मारे केटा उगे नहीं उगे तो

0: इंग में कै जिति प्रशंसा करा बीती कम है कै बरसात को मौसम है ग्वार मूंगी और बाजरी का मरक अच्छी हो रही है। तो बिल्कुल अच्छी बात है सा।
1: अभी हो रही है,
0: हाँ आ बात लिखण आ रहे कै।
1: एक कहना चाह रहे हमारा विजय चौकी हो रही है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: वो समझने में थोड़ा सो चूक गया सा।
1: चूक गया।
0: आपने ती खोकरा वाली श्री गंगानगर से मेल मांडिया विनोद बारासा विशाल बारासा विकास बारासा रोशनी बारासा सगुन बारासा ये लिखे कै राम राम सा आकाशवाणी का पूरा स्टाफ ने गुरु पूर्णिमा की घनी घनी बधाई और शुभकामना चौपाल रोजाना सुना घणो फूटो लागे लोकगीत लोक भजन खेती संबंधी जानकारी घनी दाई आवे और 22 तारीख ने का नाटक सुनो टोडियो घणो अच्छो लागो चौपाल माई खजूर के बाग किया तैयार कर सका और लगान की जी विधि तौर तरीका बताया भी बड़ा पसंद आया सा।
1: वाह सर, धन्यवाद
0: तो
1: सर।
0: आंगो भी मोकलो सारा धन्यवाद देवा कार्यक्रम सुनता रहो। कनवाणी राव सर सू कृष्ण श्या का अपनो अपना ती मेल मांडियो है बस आ इतो ही लिखियो है कि थारो कार्यक्रम जो है वो माने पसंद आवे ऐसा।
1: पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद सर थारो।
0: सादुल शेर सिंह राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड भी अपने ती मेल मांडियो है नवीन भाई ये लिखा कि चौपाल पेश करने वाला ने मारकानी सू घनी घनी रामा श्यामा और इंगमा अपने दोनों को नाम लिखियो है कि रामेश्वर भाई और नवीन सिसोदिया जी थाने सगड़ा ने मोकली मोकली रामा श्यामा। और आज तो क्या नवीन सिसोदिया भाई साहब आ गया जी शुरू हो गयो
1: वाह सर,
0: और गुरु पूर्णिमा की घनी घनी मोकली मोकली बधाई और सावण की भी शुभकामना भेजी
1: देखो
0: है।
1: रामेश्वर भाई आंगो संदेश पड़ेगा आपनों भी जी शोर हो गयो। अरे
0: हाँ
1: जिगा राम कुमार रेवाड़ जी है नी,
0: हाँ हाँ
1: ये अपने फेसबुक का तकड़ा श्रोता है।
0: मैं को रेडियो का बड़ा तकड़ा श्रोता है और फेसबुक और बी एम बी ए बड़ा सुलझड़ा इंसान
1: नहीं
0: है।
1: आपने जी का फेसबुक का जितना भी पोस्ट हुआ नी बाप है पहुंचे पहुंचे।
0: क्योंकि आप फेसबुक पर भी आवा ना।
1: हाँ तो लोगन ध्यान होना चाहिए, आप फेसबुक पर भी आ,
0: बिल्कुल चाहे दो घड़ी आवा लेकिन आवा जरूर
1: आवा
0: हाँ
1: जरूर। हाँ
0: हाँ और आगे भी यहाँ लिखे है कि खेती की जी की बातें हैं नाटक रूपक बाजार भाव मौसम की जी की जानकारी है भाभी यहाँ अच्छी लगे टोडियो नाटक सुनियो अच्छो लगे और खेती हरा वास्ते कार्यक्रम में रामेश्वर भाई जी की तिलहन खेती पर जानकारी दी आज कबा न पसंद आई।
1: तिलन की खेती पे।
0: हाँ बिल्कुल अब तिल को जो आखिरी छेकड़ लो टेम चलाना रहे नवीन भाई जुलाई को जो को दूसरों पखवाड़ा का माँ और आखिरी पखवाड़ा का माँ भी जान कर सका तो बिंगी जानकारी आज आप खेत खलियान में दी
1: अच्छा
0: और अन पसंद आई।
1: पसंद तो आई सी।
0: बिल्कुल आंगो मोकलो सारा धन्यवाद देवा। गांव गंदेली से अपना श्रोता है पालाराम स्याग रमेश मोनिका संदीप भावना और आंगा माता जी है बिमला स्याग पोतो राघव स्याग ये भी कह कार्यक्रम बड़ो फूटरो चलने ला रहे है और मारा कानी से घनी घनी रामा श्यामा और पौधा अपने कह पौधा लगाने की जी की खजूर की जानकारी दी बा ने बढ़िया लागी।
1: वाह सा बहुत बहुत मोकलो मोकलो थारो भी धन्यवाद सा।
0: अपने ती मेल पुगे लखवाड़ी हेड सू मास्टर भंवरलाल कृष्णा सौरभ ममता विशाल राजबाला नव्या लक्षिता मोहम्मद रफीक महावीर लोरा संगरिया सू और मुकणा राम आ सावण की रामा श्यामा लिखे और चौपाल का मारा हिवड़ा से जुड़ेड़ो है और इमा नाटक गीत भजन बाजार भाव बे सगड़ा सुनाओ भी माने पसंद आवे ऐसा।
1: वाह सा धन्यवाद सा।
0: बिल्कुल आपने ती एक और मेल पुगड़ो है और वो मेल लिखे है गांव बहलोल नगर से लिखने वाला है पटवारी राम बेनीवाल शांति बेनीवाल राधा बेनीवाल और संदीप एक एक थारो कार्यक्रम जो है वो माने पसंद आवे और इमा जितनी भी थे जानकारी दियो बे माने बड़ी दाया आवे और इनके अलावा गीत भजन बाजार भाव जगह मौसम की जानकारी दियो बे भी बड़ी पसंद आवे ऐसा।
1: वाह साहब वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आंगो भी आपा मोकलो सरो धन्यवाद देवा। अगलो जो को मेल पुग्यो है वो पुग्यो है गांव हंसलिया से और लिखने वाला है लालचंद खाड़ू और अंग सागे लक्ष्मी देवी एक है कि मैं ढाणी में बैठा और थारो जो को कार्यक्रम है वो नितवंद्यो सुना माने बड़ो पसंद आवे और इनके अलावा कह थे जितनी भी जानकारियां दियो बे बड़ी माने दाए आवे कह
1: देखो
0: और
1: रामेश्वर भाई, मन तो यहाँ दिखने लग रहा है कि ढाणी के अंदर चारों कन्या खेत है और ए बीच में बैठे बैठे यार अपनों कार्यक्रम रेडियो पर सुनने लग रहे हैं।
0: बिल्कुल आपनों कार्यक्रम जो है वो खेत कैरी का बारागमा है तो ये ढाणी में बैठे तो जरूर खेती करता हो सी है ना।
1: हाँ
0: और इनके
1: कितनी
0: अलावा
1: बढ़िया बात है। देखो
0: हाँ क्या का आपनों कार्यक्रम जो है वो नवीन भाई हर बच्चे के लिए हर जो को तबका को इंसान है बिंगे लिए चाहे अपना पढ़निया गुणनिया टाबर है बंगे लिए बड़ा बुजुर्गों के लिए घर गृहस्थी के लिए खेती बाड़ी के लिए पशुधन के लिए अपा हर तरह की जानकारी है अब ले गया वहाँ।
1: बिल्कुल, आपा बच्चा से लेकर बूढ़ा ताई सब ने आपा जी का पहुंचा।
0: बिल्कुल बिल्कुल अपने अब की है कि अपना कन कार्यक्रम को टाइम इतो ही है और भाई लोगों से यूँ लेवा आगे और चला
1: बस इतनी जल्दी पता ही कौन लागे।
0: चालनो पड़ेगा साहब यूँ बाद गा फिर किया का काम धंधा जगह है भी अपन और भी करना है।
1: हाँ तो फिर चालो सा।
0: चलो सा राम राम सा
1: राम राम सा।
0: राम
1: राम
0: राम राम
1: राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनिए निकाह फिल्म का ये गीत, महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सलमा आगा और साथियों की आवाज़ों में। गीत रचना हसन कमाल की, संगीत रवि का।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने, आदमी और इंसान फिल्म से। गीत को गाया महेंद्र कपूर, बलवीर, जोगिंदर और साथियों ने। गीत रचना साहित्य की और संगीत रवि का।

0: मुकेश के गाए सरस्वती चंद्र फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: है अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन

निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीए

उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के

0: खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मानसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, एक ही फिल्म से सुनिए।

0: आनंद बख्शी के बोलों के साथ लता मंगेशकर और किशोर कुमार को भी आपने सुना। धुन तैयार की थी आर डी बर्मन ने और फिल्म थी हमारी आज की अलग अलग। कार्यक्रम का अगला गीत सुने, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने, लता मंगेशकर और किशोर।

0: कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत और फिल्म का नाम अलग अलग।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको
2: हाँ?

0: स्मार्ट डिसीजन।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: किए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरजिंदर कौर और गुलवीर सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर बधाई दी।
2: वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह को टीम की कमान सौंपी।
2: और शुभमन गिल बने वनडे में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज। वैभव ने लगाई लंबी छलांग।
1: जी हाँ, आज की हेडलाइन ये थी अब तक की स्पोर्ट्स की हेडलाइन। और श्रोताओं, खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में आज का दिन भारतीय मुक्केबाजों के नाम रहा, जिसमें मुक्केबाजी में भारत ने 5 पदक पक्के कर लिए हैं। पुरुष वर्ग में नरेंद्र बेरवाल ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन सिवाच ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि महिला वर्ग में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की की।
2: सिद्धार्थ उधर, तजिंदर सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत अब 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर। सिद्धार्थ, लगातार भारतीय टीम हर दिन एक नया इतिहास रच रही है।
1: जी हाँ प्रशांत, और आज जिस तरह से हमारे मुक्केबाजों ने एक के बाद एक करके जो उन्होंने जीत का सिलसिला कायम किया, तो फिर वो रुका नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की। और पुरुष मुक्केबाजी की पहले अगर हम बात करें तो नरेंद्र बेरवाल की बात करनी होगी, जिन्होंने 90 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में समोआ के माइकल सेको को 3-2 से हराया। हालांकि शुरू में यह मुकाबला थोड़ा बराबरी पर रहा, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र ने अपना प्रदर्शन किया, उन्हें 3-2 से जीत मिली। वे टॉप 4 में पहुंचने वाले 9वें मुक्केबाज बन गए।
2: लेकिन सिद्धार्थ, अंकुश ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक तरफा मुकाबला खेला और 5-0 से अपने प्रतिद्वंदियों को जो शिकस्त दी है। उनसे पहले अंकुश ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में सेशल्स के जे मिकॉक को 5-0 से हराकर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया। सिद्धार्थ,
1: जी हाँ, 5-0 जिसे हम कह सकते हैं कि, और हालांकि जो 5-0 का सिलसिला था वो प्रशांत रुका नहीं, और आगे का जो इसके पहले जो मैच हुआ उसमें सचिन ने 70 किलोग्राम वर्ग में बोत्सवाना के ट्रेसर मोरेमी को 5-0 से एक बार फिर से हराया। और जो जीत के लम्हे होते हैं ना, उसके बाद सचिन ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं।
3: गोल्ड लेके ज्यादा गोल्ड की उम्मीद थी, और मेरे मेडल मेरे कोच और मेरे घर वालों को ही दूंगा। स्टार्टिंग में बाउट से पहले थोड़ी घबराहट थी, लेकिन बाउट में जाते ही सारा डर वही ऑटोमेटिक चला गया और इजी बाउट थी, और आगे भी यही अच्छा अड़के में नहीं लेना है और गोल्ड लेके जाना है।
1: जी हाँ, तो ये थे हमारे पुरुष वर्ग के खिलाड़ी जिन्होंने आज 3 पदक पक्के किए, देश के नाम किए। और प्रशांत, महिला बॉक्सिंग में की बात करें तो क्या कुछ बता रहे हैं आप।
2: अरुंधति और साक्षी चौधरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिद्धार्थ, अगर हम महिला बॉक्सिंग की बात करें तो अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में न्यूजीलैंड की मॉर्गन एडरसन को 3-1 से हराया। सुनते हैं क्या कह रही है अरुंधति।
4: डेडिकेट तो मैं मेरे छोटे भाई को करना चाहूंगी, और हाँ, हार्ड था क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा ओपोनेंट था, बट काफी मजा आया और जरूर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे।
1: जी हाँ, अपने भाई को अपनी जीत को डेडिकेट किया है, और अब सबकी नजर अपने आगे के प्रदर्शन पर है कि सेमीफाइनल में क्या कुछ होता है। लेकिन इसके साथ ही 51 किलोग्राम भार वर्ग की अगर हम बात करें तो साक्षी चौधरी ने नॉर्दर्न आयरलैंड की कैथलीन फ्रेयर को 5-0 से हराकर अपना दमखम दिखाया। आइए जानते हैं

0: सचिन ने जीत के बाद क्या कुछ कहा।
1: ये जो जीत थी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसके बाद मेरा मेडल कंफर्म हो गया है और ये मेरा फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था, कि मैंने जो मेहनत की थी, जो सबका सपोर्ट था, उसकी वजह से आज मैं मेडल कंफर्म कर पाई हूँ। और अभी मेरी आगे यही कोशिश रहेगी कि मैं और अच्छा करती जाऊँ और मेडल का कलर गोल्ड में बदलूँ। मैं पूरे इंडिया को ये अपना जो जीत है इसको डेडिकेट करना चाहूँगी, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया है।
0: जी हाँ, अपनी जीत भारत को डेडिकेट कर रही हैं साक्षी, और क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आज
2: बॉक्सरों का जो प्रदर्शन रहा है
0: हम लोग पूरे मैच पर नजर बनाए हुए थे अपने इस शो के लिए, और एक के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे बॉक्सर्स पदक पक्का करने लगते हैं तो हमारे अंदर भी जोश आ जाता है, और वो फिर कहीं ना कहीं जो मोमेंट्स हैं वो कभी ना भूलने वाले मोमेंट्स होते हैं। और पूरे सफ़र पे अगर हम एक नज़र डालें तो इससे पहले लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम, प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम, प्रिया ने 60 किलोग्राम और जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर ही चुके हैं। तो एक शानदार सफर, क्योंकि भारतीय मुक्केबाजों से काफी उम्मीद रहती
2: बिल्कुल,
0: है लोगों
2: बिल्कुल
0: की।
2: और उसी उम्मीद पर कायम खड़े उतरे हैं सिद्धार्थ। अगर हम देखें तो पूरे अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात की जाए तो बॉक्सिंग में भारत ने 9 पदक पक्के कर लिए हैं, और आज के दिन की बात की जाए तो 5 पदक खिलाड़ियों ने जो है देश को समर्पित किया है और बेहतरीन प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं और भी इवेंट्स में, और बॉक्सिंग में आज उसी का एक प्रमाण देखने को मिला हमें।
0: बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जो मुक्केबाज हैं वो किस तरीके के पंचेस लगाते हैं और अपने अपोनेंट को धाराशाही करके अपने पदक का, जो यहां पर पदक तो पक्का किया ही है, लेकिन हम सभी को उम्मीद है कि जीत का ये जो परचम है वो देश के लिए ये सभी खिलाड़ी लहराते रहेंगे। और इसके साथ बॉक्सिंग से थोड़ा बाहर निकलते हैं, बात करते हैं शॉटपुट की। प्रशांत, शॉटपुट से क्या खबर है?
2: शॉटपुट में सिद्धार्थ अगर हम बात करें तो तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल इवेंट जो है वो बृहस्पतिवार को खेला जाएगा और आज सबकी निगाहें इन पर थी और उसी तरह का प्रदर्शन भी कर दिखाया उन्होंने।
0: जी, और क्वालिफिकेशन में तूर को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क यानी 20 मीटर की दूरी पार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तूर ने अपने पहले प्रयास में 19.93 मीटर की दूरी तय की, जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने 20.14 मीटर का थ्रो फेंककर फाइनल में जगह पक्की कर ली।
2: वहीं समरदीप सिंह गिल का दिन आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर रहा। उन्होंने 19.95 मीटर का थ्रो करके उन्होंने अपना पहले ही प्रयास में ये जो है अटेम्प्ट जो है अब सफल बनाया। उनका दूसरा थ्रो 19.75 मीटर का था, जबकि तीसरा थ्रो फाउल हो गया, लेकिन उनका भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा।
0: जी हाँ, पहले ही थ्रो में देखिए तो 99.95 मीटर पे पहुंचा, और दोनों ग्रुप में कुल 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से गिल कुल पांचवें स्थान पर रहे। ग्रुप ए में 7 और ग्रुप बी में 8 खिलाड़ी शामिल थे। तो नियम के अनुसार जो खिलाड़ी 20 मीटर का मार्क पार करते हैं या टॉप 12 में रहते हैं वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरजिंदर कौर और गुलवीर सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर बधाई दी है। इन दोनों ने खिलाड़ियों ने भारत के लिए रजत पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उन्हें पुरुषों की इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई, उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण तारीफ के काबिल हैं, भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।
2: उधर महिलाओं की 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सफलता के लिए हरजिंदर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों में हमारे वेटलिफ्टर्स का इतना अच्छा प्रदर्शन देखना खुशी की बात है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता।
0: जी हाँ, हरजिंदर ने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम वजन उठाया। इस पोडियम फिनिश में ग्लासगो में भारत के शानदार वेट लिफ्टिंग अभियान को और ज़्यादा मजबूत किया। पदक जीतने के बाद अपने जो हरजिंदर ने अपने अनुभव को कुछ इस तरीके से साझा किया।
3: मैं बहुत खुश हूँ सिल्वर मेडल जीत के और अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश हूँ। ट्रेनिंग में मैंने इससे अच्छा क्लीन जर्क कर रखा है, पर फिर भी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी 6 की 6 लिफ्ट पास। मैं सोच के आई थी इस बार के एक तो मैंने अपने मेडल का कलर चेंज करना है और दूसरा मुझे अपनी लिफ्टिंग अच्छी करके आनी है। मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहती हूँ।

0: क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे और इंडियन फेडरेशन गवर्नमेंट सबका बहुत सपोर्ट है, उनकी वजह से आज हम यहाँ तक हैं।
1: उधर गुलवीर ने भी इस प्रतियोगिता में यादगार प्रदर्शन किया और देश के नाम रजत पदक जीता। जीत के बाद उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया।
2: अच्छा हुआ क्योंकि हमारे देश के लिए मेडल आया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोच को खुशी है और जितने भी हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो ये है बाहर के जितने एथलीट हैं उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, हम इनके साथ कैसे दौड़ेंगे, क्या हुआ, बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं तो हमारे अंदर की जो फीलिंग है ना वो निकल जाती है, क्योंकि हम ये लगता है हम मेडल जीते किस हिसाब से वो कंपटीशन कर रहे हैं हमारे से।
3: जी हाँ, जिस तरीके का प्रदर्शन गुलवीर ने किया, पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया और वे इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। और मुक्केबाजी की हम बात कर रहे थे, वही मुक्केबाज जादूमणि ने 55 किलोग्राम वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जाम्बिया के मेंगो वाले को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराया। उन्होंने एक के बाद एक पंच लगाए और विपक्षी मुक्केबाज को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। और जीत के बाद उन्होंने अपना अनुभव कुछ इस तरीके से साझा किया।
4: काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पहले का गेम्स में मेरा मेडल आके, तो मैं इससे और अच्छा करूंगा कि आने वाला अगले सेमीफाइनल में इसे बेटर कर सकूं मैं और इंडिया के लिए गोल लेके जाऊंगा।
1: वहीं भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
5: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सुश्री हरजिंदर कौर तथा श्री गुरवीर सिंह रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं।
3: ऑन्टारियो में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में कुवैत को 2-1 से हराया, जबकि महिला टीम ने ग्रुप चरण के अपने आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराकर दमदार जीत दर्ज की है। सुनते हैं वैष्णव की ये रिपोर्ट।
6: 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम को कुवैत के खिलाफ जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। पहले मैच में युशा नफीस को कुवैत के अब्दुल्ला अली के खिलाफ सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की। दूसरे मुकाबले में आर्यवीर दीवान ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए खालिद वली अल्फोजेन को 11-5, 11-6 और 11-5 से हराकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद निर्णायक मैच में गुरवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब्दुल रहमान अल सानिया को 11-3, 11-3 और 11-4 से हराकर भारत को 2-1 की जीत लाई। अब भारत
1: उधर भारतीय महिला हॉकी टीम बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले हॉकी विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर आज यूरोप के लिए रवाना हो गई। ये विश्व कप 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला सिद्धार्थ 16 अगस्त को चीन के खिलाफ खेलेगा। विश्व कप से पहले भारतीय टीम 31 जुलाई और 1 अगस्त को मेजबान टीम जर्मनी के खिलाफ लगातार 2 फ्रेंडली मैच खेलेगी। और उधर सिद्धार्थ, हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है।
3: जी हाँ, और हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। यह प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। उधर ग्वालियर में हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस एकेडमी चैंपियनशिप और हॉकी इंडिया जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप के दौरान सब जूनियर प्रतियोगिता में खालसा स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी कोलकाता और राजाकर हॉकी एकेडमी ने जीत हासिल की है, जबकि जूनियर प्रतियोगिता में भाई बहलो हॉकी एकेडमी और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी विजय रहे।
1: और अब बात क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। आईसीसी ने आज बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज बन गए। वहीं वैभव सूर्यवंशी को भी T20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा पहुंचा है। वैभव 536 रेटिंग पॉइंट के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 48वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं।
3: और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपसे कुछ और बातें करें या किसी और खेल खबरों पर चर्चा करें। इसी के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ और प्रशांत को। नमस्कार।

0: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे।
1: कोई सबूत नहीं है, कभी भी कोई लाठीचार्ज, टीयर गैस, केनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
2: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
3: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
4: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है।

0: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb

गुलाम आए गुलाम अली की गाई ये गज़लें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम सुगम संगीत में। आइए इन्हीं की गाई एक और गज़ल हम आपको सुनवाएं।

गुलाम अली की गाई इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 988 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है मानसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मानसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मानसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत।

0: नमस्कार
1: नमस्कार
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मानसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
1: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मानसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहला मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इस समय हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे। हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट राडार इमेज देख के हम प्रकार नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे। लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है। तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छा से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज है ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सैटेलाइट राडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है हमारा मॉडल, और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा पर डाटा एसिमुलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये सारे कम्बाइंड अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इंप्रूव।
2: जी डॉक्टर सूर्यप्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से

0: आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है?
1: आनंद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी वर्षा की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं। न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग

0: इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहे। तो जो भी बारिश का समय होता है और आप पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं, तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेज हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन्स होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
2: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारा जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है, ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते रहे, अगर 1 घंटा में कभी क्लाउड बस्ट टाइप का इवेंट, जो आपको भी पता है कि 1 घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटर शेड रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है, जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है। वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा एफएजीएस, और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, 2 बार दिन में तो बन रहा है। तो अगले 6 घंटा के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में ओडिशा के इंटीरियर ओडिशा में। तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा। तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशिएंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज में है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसीडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमिडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं। ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क

0: पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें।
1: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया।
2: ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर सेट है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
0: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं। ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें।
1: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाए। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिस हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ पीएनजी है दिल्ली में जैसे, उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
0: डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
2: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे ही था उसमें आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर का भी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हैवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए रडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो राडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने पता नाव कास्टिंग, तो ये राडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नाव कास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है, तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारे जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें

0: हमारा नाव कास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नाव कास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है ते राडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने अभी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारा दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ही वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है या आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क और राडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात जो गाँव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्सा में काफी मदद करता है हमारा राडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
2: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स्ट के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे मुर्गा बैठता है तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं, और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले 1 महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
0: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ की तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न ओडिशा में है, इंटीरियर ओडिशा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है, बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भ एरिया में भी

0: चेतावनी दिए है। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है, एक दो दिन चलेगा और जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए, तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई महीना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है। और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था। तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है 1 जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15-25 दिन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी स्थिति आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे। जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह वार्निंग वगैरह वो देते रहेंगे। एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं, तो वो भी हमारे ये आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज ए होल अगर देखेंगे आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मानसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था। वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
2: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे धराली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज 2 वजह से होती है। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है। तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ है या उलट गए हैं। ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाए। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान, जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं, तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है तो हमेशा हम उस क्षेत्र में

0: ध्यान पूर्वक जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूधसाव की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारे मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है
5: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए फिल्म संगीत सुनिए। आज फिल्म संगीत में सबसे पहले हम याद करें एक भारतीय कवि, लेखक और गीतकार राजा मेहदी अली खान को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आप एक संगीतकार भी थे, आपने अपने जीवन काल में फिल्म जगत में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपके बहुत सारे लोकप्रिय गीत आज भी लोगों के दिलों में बरकरार हैं। आप एक गीतकार के रूप में एक बेहतरीन फिल्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आज हम इस कार्यक्रम में शुरुआत करें उनके लिखे गीत से और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें।

अभी आपने लता मंगेशकर का गाया मेरा साया फिल्म का ये गीत सुना। गीत रचना राजा मेहंदी अली खान की, संगीत मदन मोहन साहब का। आज के दिन राजा मेहंदी अली खान साहब को याद करें उन्हीं की इस नज़्म के साथ कि मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, तड़पना उनकी किस्मत में सुबह और शाम होता है, और हमेशा के लिए दुनिया में दो दिल मिल नहीं सकते, नज़र मिलना जुदाई का ही एक पैगाम होता है।

0: गीत की रचना राजा मेहंदी अली खान ने की, संगीत एसटी बर्मन ने तैयार किया। इस गीत को सुनाने का हमारा एक ध्येय ये कि आज चूंकि उनकी पुण्यतिथि है और आज हम इस कार्यक्रम के मार्फत उन्हें याद कर रहे हैं, तो राजा मेहंदी अली खान साहब जिन्हें पहली बार एस मुखर्जी ने 1946 में बनी फिल्म दो भाई में गीत लिखने का मौका दिया और इसी फिल्म का ये गीत काफ़ी चर्चा में रहा, लोगों ने इस गीत को काफ़ी पसंद किया, इसलिए आज हम आपको ये गीत सुनवाए हैं। आपने देशभक्ति के अनेक तराने भी लिखे। बहरहाल कार्यक्रम में आइए उन्हीं का लिखा एक और गीत हम आपको सुनवाएं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो।

0: अभी आपने वो कौन थी फिल्म का गीत सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत रचना राजा मेहंदी अली खान की और संगीत मदन मोहन का। साथियों, राजा मेहंदी अली खान के गीतों की विशेषता उनकी सहज भाषा, गहरी भावनाएं, प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति और काव्यात्मक सौंदर्य है। यही कारण है कि उनके लिखे अनेक गीत आज भी हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर हैं। आइए उसी धरोहर में से एक और गीत हम आपको सुनवाएं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में अनपढ़ फिल्म का ये गीत सुना। गीत रचना राजा मेहंदी अली खान की। राजा मेहंदी अली खान एक ऐसे गीतकार हुए जिन्होंने न केवल फिल्म जगत को बेहतरीन गीत दिए बल्कि अपने मधुर भावपूर्ण और साहित्यिक गीतों से हिंदी सिनेमा को अनेक अमर रचनाएं दी। उनके गीतों में प्रेम, विरह, संवेदना, प्रकृति और मानवीय भावनाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी अपने समय में थी। तो आइए उनकी एक और रचना हम आपको सुनवाएं इस गीत के माध्यम से।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खान का लिखा आपकी परछाइयाँ फिल्म का ये गीत सुना। आज हम इन गीतों के माध्यम से राजा मेहंदी अली खान साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ की तरफ से। आपने प्रारंभ में उर्दू शायरी लिखनी शुरू की, आपकी प्रतिभा को कहीं भी नकारा नहीं गया। आप एक प्रसिद्ध लेखक और बेहतरीन गीतकार बने। हसन मंटो जो एक प्रसिद्ध लेखक और निर्माता थे, उन्होंने आपको हिंदी फिल्मों में काम करने का अवसर दिलाया और एक बार अवसर मिलने के बाद आपने फिर पीछे मुड़कर न देखा। आपने अनेक प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन विशेष रूप से आपकी जोड़ी मदन मोहन साहब के साथ रही। हालांकि आपका जीवन बहुत छोटा रहा, लेकिन फिर भी आपने हिंदी फिल्म संगीत को अपनी अमूल्य धरोहर प्रदान की। आइए उन्हीं का लिखा एक और गीत हम आपको नश्र करें।

संगीत मदन मोहन साहब का। आइए इन्हीं का लिखा नीलाकाश फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएं, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत रचना रजा मेहंदी अली खान की और संगीत मदन मोहन साहब का।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएं। फिल्म का नाम दुल्हन एक रात की, गीत रचना राजा मेहंदी अली खान का, संगीत मदन मोहन साहब का। आइए सुनें।

दुल्हन एक रात की। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गीत रचना राजा मेहंदी अली खान साहब की। राजा मेहंदी अली खान साहब को आज हम याद कर रहे हैं, उन्हीं का लिखा एक और गीत हम आपको सुनवाएं इस बात के साथ, कि न दिल में चैन है, न दिल में चैन है हमको, न रातों को करार आए, न दिल में चैन है हमको, न रातों को करार आए, बता दे कोई दुनिया में कहाँ आराम होता है, और मेरी बर्बादियाँ भी देख ली तुमने, जहाँ वालों जो करता है।

अभी आपने राजा मेहंदी अली खान साहब का लिखा, मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया, जब याद किसी की आती है फिल्म का गीत सुना। इस गीत को गाया था महेंद्र कपूर ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने, इन्हीं का लिखा, मुकेश की आवाज़ में, अनीता फिल्म से।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।

0: पढ़ना विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम एक मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: India's overall medal tally currently stands at 12, comprising 2 gold, 7 silver and 3 bronze. And that's the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड

14.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:52 पर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।